0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है दिमागी घोड़े दौड़ाने का, यानी हर रोज की तरह हमारे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही जवाब देने का। जो भी श्रोता दोनों प्रश्नों के सही जवाब देंगे तो उन्हें मौका मिलेगा अपनी पसंद के गीत सुनने का। जवाब के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। श्रोताओं, हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था?

श्रोताओं, आज का दूसरा प्रश्न है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न को दोबारा सुने, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रोताओं, लिख भेजिएगा अपने सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9729253272 9729253272 पर। हमें आपके प्रश्नों के जवाबों का इंतजार रहेगा। आइए तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: भारत अभियान।
1: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर

0: तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीवी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीवी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीवी मुक्त बनाएं।
1: ट्रीट एवरी टीवी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
2: जारी करता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है नमस्ते हिसार में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त पंकज अग्रवाल। अब वक्त है एक शख्सियत के बारे में जानने का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती जीवनी देवी जी के बारे में। जीवनी देवी जी एक प्रसिद्ध महिला एथलीट रही। उनका जन्म 8 सितंबर 1948 को हिसार जिले के घिराए गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के एक साधारण जमींदार थे। जीवनी देवी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे।

उन्होंने सन 1966 में अपने गांव के सरकारी विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की। उन्होंने आगे की पढ़ाई एफसी कॉलेज हिसार से की। सन 1974 में राष्ट्रीय खेल संस्थान से एथलेटिक्स में डिप्लोमा किया। अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान जीवनी देवी ने शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और भाला फेंक जैसी विभिन्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय चैंपियन का दर्जा प्राप्त किया। वो देश की उन विरले खिलाड़ियों में से थी जिन्होंने छात्र जीवन में 6 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज की।

0: दोस्तों जीवनी देवी जी के बारे में।
1: जीवनी जी के बारे में आप सभी से बातें जरूर साझा करेंगे। पहले सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और हमारे उन श्रोता की पसंद पर जिन्होंने सबसे पहले हमारे दोनों सवालों का जवाब दिया है। पहले उनकी पसंद का गीत सुनते हैं, फिर आपको बताएंगे उनके नाम।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: श्रीमती जीवनी देवी जी ने सन 1963 में पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में 89 फुट 7 इंच की दूरी तक चक्का फेंककर एक रिकॉर्ड कायम किया। अपनी सेवा अवधि के दौरान जीवनी देवी ने अपने शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि भी की। उन्होंने सन 1976 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में MA तथा 1978 में MPED की डिग्री भी प्राप्त की।

श्रीमती दीवनी देवी का विवाह 30 दिसंबर 1978 को डॉक्टर सत्यदेव शौकंद से हुआ, जो उस समय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। लगभग 12

उसका वैवाहिक जीवन बिताने के बाद 4 जून सन 1990 को उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु मात्र 42 वर्ष थी, लेकिन इस 42 वर्ष के जीवन को जो उन्होंने सार्थकता दी, हरियाणा की माटी से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की पहली महिला एथलीट बनी, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हरियाणा के खेल इतिहास में सदैव उनका नाम सम्मानपूर्वक लिखा जाएगा। और ये जीवनी देवी जी हमारी सभी महिलाओं के लिए जो खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहती है, उनके लिए एक जीवंत उदाहरण है।

श्रोताओं, श्रीमती जीवनी देवी जी का ये जो जीवन परिचय है, ये उन महिलाओं के लिए एक वाकई प्रेरणा स्रोत के रूप में है जो महिलाएं खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराना चाहती है। लेकिन कई बार समाज के डर से या परिवार की पाबंदियों के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाती। वो इसे सीख ले और अपना खेलों में सर्वसर्व योगदान दें।

0: अर्ज किया है, राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपने पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
1: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
1: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
3: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
1: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

दोस्तों वक्त हो चला है सवालों के सही जवाब जानने का। हमारा पहला प्रश्न, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? इस प्रश्न का सही जवाब है कृष्ण प्रथम। आज का हमारा दूसरा प्रश्न, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब है प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए।

दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हमारे उस श्रोता का नाम जिन्होंने दोनों प्रश्नों के सही जवाब सबसे पहले भेजे हैं हमें। हमारे वो श्रोता हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, जिनकी पसंद का गीत अभी हमने सुना अनाड़ी फिल्म का किसी की मुस्कुराहटों से हो निसार। इस गाने को उनके साथ साथ हम सब ने भी सुना और इस गाने का हमने आनंद लिया। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ और भी श्रोताओं के नाम जिन्होंने सही जवाब दिए हैं। गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना जी के साथ साथ अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप बेबी किरत अवाना। सुंदरनगर हिसार से मोनिका खरलवा पंकज शिवम नैन्सी सुलेख सुरेश खरलवा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत गुरशब्द सिंह राहुल।

श्रोताओं, रोज की ही तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे इस कार्यक्रम में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ठीक 10 बजे नमस्ते हिसार में। अभी हम सुनते हैं एक सुंदर सा नगमा।

दोस्तों, कार्यक्रम नमस्ते हिसार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और ये बेहद ही खूबसूरत से नगमे आप सभी के साथ हम भी सुन रहे हैं। तो दिन की शुरुआत एक खूबसूरत एहसास के साथ होती है। हमारे कुछ साथी अभी हमें सुन रहे होंगे और कुछ ने अभी शायद अपना रेडियो सेट्स ऑन किए होंगे। तो हम बता दें, रोज नमस्ते हिसार में हम 10 बजे आप सभी के लिए लेकर आते हैं रोचक जानकारियां, हिसार के बारे में कुछ खबरें, और आपसे पूछते हैं दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अगर आप भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9729253272972253272।

जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, पर आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी सेहत को सबसे आखिर में रख देते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहना सिर्फ बीमारी न होना नहीं है, स्वस्थ रहना है शारीरिक रूप से मजबूत होना, मानसिक रूप से शांत रहना और सामाजिक रूप से खुश रहना। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही आदतें जो हमें निरोगी रख सकती हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज की दिनचर्या के बारे में। हमारे ऋषि मुनि कहते भी थे कि भोर के उठना और भोर के सोना, यानी कि सुबह 5 से 6 बजे उठ जाना चाहिए और रात 10 बजे तक सो जाना चाहिए।

0: स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, दिन में हमें 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए और सुबह खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पीना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे आहार को लेकर, तो इसमें थाली का गणित समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थाली का आधा हिस्सा जिसमें सब्जी और सलाद होना चाहिए, 1/4 में दाल या दही होना चाहिए, बाकी 1/4 भाग में हम रोटी या चावल शामिल कर सकते हैं। मौसमी फल खाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: मतलब कहने का ये है कि सारी चीजों की थोड़ी थोड़ी शरीर को जरूरत है, प्रोटीन विटामिन सारी चीजें अगर शरीर को पूरी मिलेंगी तो वो थाली सेहत के लिए भरपूर होगी।
0: और श्रोताओं कम से कम

जी हाँ बिल्कुल, सेहत के लिए सबसे जरूरी है इन दिनों खाना और पानी पे ध्यान देना, और उसके साथ साथ हमें कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक भी करनी चाहिए। और वॉक के साथ साथ या तो वॉक करो या योग करो, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो अपने घर पर ही डांस कर लो, पसीना बहाने से मतलब है, जिससे हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और दिमाग हमारा फ्रेश रहता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, आजकल बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, एरोबिक्स है, कार्डियो है, और जो हमारे साथी जिम जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं शरीर की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेहत की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ बैड पार्टिकल्स हैं बॉडी के, वो पसीने में निकल जाते हैं, और जो हमारी प्रोटीन वाइटामिन हम सारा दिन खाते हैं वो भी कंज्यूम हो जाते हैं।
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डांस भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या डांस करने से सिर्फ शारीरिक फायदा नहीं होता, इससे हमारा मानसिक फायदा भी होता है। कैसे? अगर हम तनाव में हैं तो यदि हम डांस कर लेते हैं तो हम उसमें गाने सुनते हैं, डांस करते हैं, तो वो तनाव भी कहीं हद तक कम हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो एक थेरेपी है। मेंटली अगर हमें एक्सरसाइज करनी है तो उसकी थेरेपी संगीत है, या फिर अपनों के साथ बैठना है, अगर अपनों के साथ बैठ के हम हंसी ठिठोले करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे तो वो हमारी मेंटली एक्सरसाइज है। और जो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो डांस कर लिया या फिर घूम लिया या फिर कुछ और कार्डियो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी हम देख सकते हैं एक्सरसाइजेज और डांस की फॉर्म्स जिससे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।
1: जी, शो जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया का जमाना है कि हम देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि नेट से देख के हम देख तो लेते हैं, लेकिन यदि हम किसी चीज को पूर्ण रूप से सीख ना पाए तो उसको गलत प्रयोग ना करें, इससे हमें नुकसान भी हो
0: जी
1: सकता
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल, टीम जो है और ट्रेनर जो है दोनों का सामंजस्य जरूरी है। अगर हम जिम जाते हैं, कार्डियो जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, तो वहां पे भी जो ट्रेनर है वो उस चीज की हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो हमें कराते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें सामंजस्य बिठा कर चलना चाहिए।
0: तो
1: जैसे एक विद्यार्थी जीवन में होता है, अगर विद्यार्थी को एक अध्यापक नहीं मिलेगा तो वो ठीक से शिक्षा नहीं ले पाएगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, सही ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम

0: श्रोताओं, आज के समय में जो सोशल मीडिया जो हम साथी समझ रहे हैं, जिसे बहुत बड़ा कुछ भी हो, हम सोशल मीडिया से एक सेकंड की दूरी भी नहीं बना पा रहे हैं, तो कुछ लोग इससे बहुत खुश हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि ये हकीकत में खुशी है, या फिर हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हम खुश हैं? खुश रहने के लिए सोशल मीडिया एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है। खुशियां तो छोटे छोटी चीजों से ही मिल जाती हैं जीवन में।
1: बिल्कुल
0: हम
1: प्रियंका, जो एक 30 सेकंड की रील, 60 सेकंड की रील देख के खुशी होती है, वो शायद एक पल की खुशी है, और वो रील शायद हम दोस्तों को शेयर भी करते हैं,
0: जी
1: लेकिन कभी
0: सर,
1: सोचा है उन दोस्तों को, जब सोचते हैं उनके बारे में, क्या उनके साथ पल बिताए थे, जो छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करी थी? आज भी अगर गैलरी में आपकी 10 साल पुरानी फोटोज अगर सामने आ जाती हैं, तो एक हल्की सी जो मुस्कान होती है, शायद वो है असली मुस्कान।
0: जी सर, हम कैमरे में जो फुटेज को कैद कर लेते हैं, तो वो लम्हे हमें बरसों तक याद रहते हैं। जब हम उसको, तस्वीरों को देखते हैं, तो हम उसी लम्हों में वापस चले जाते हैं जहां हमने उन्हें महसूस किया था। हम वहां पर उनका आनंद उठा रहे थे उस समय पर, तो हम उसमें वापस जा सकते हैं उन तस्वीरों के माध्यम से।
1: तो ये छोटी छोटी जो खुशियां हैं दोस्तों, इन सभी को सेलिब्रेट कर लिया करो, क्योंकि गम तो कभी भी बैठे बिठाए आ जाता है। आज के समय में किसी का कुछ भी नहीं पता, जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं, तो जिस समय जो खुशियां मिल रही हैं उन्हें बटोर लिया जाए तो अच्छा है।
0: जी सर, खुश रहने के लिए जरूरी तो नहीं है कि हम कुछ विशेष ही करें। हम छोटी छोटी चीजों से भी तो खुश रह सकते हैं। एक बच्चे की मुस्कान को देखिए, एक 5 साल का बच्चा जो मुस्कान देता है, उस मुस्कान से भी तो हमें खुशी मिलती है। उस बच्चे की हरकतों को देखिए, जो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी भी चीज को ध्यान में रखते हुए वो जो हरकतों को करता है, उनसे भी तो हम खुश रह सकते हैं। एक चाय की भाप को देखकर भी तो हम खुश रह सकते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, वो भी एक नई ऊर्जा हमारे जीवन में भर देता है।
1: जी बिल्कुल, असली खुशी तो शायद उस बच्चे की ही है, क्योंकि उसको समाज का नहीं पता, पैसे का नहीं पता, लालच का नहीं पता, वो खुशी दिल से है।

0: खुश रहने के लिए हम तनाव को कम करेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और तनाव को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद चीज है वो है नींद, सुकून भरी नींद। शाम के वक्त सोने से पहले हमें 1 घंटा पहले तो हमारे मोबाइल को दूर कर ही देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया वो चीज है कि हम उठते ही फोन को ले लेते हैं और सारा दिन उसी में ही लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते गए स्क्रॉल करते गए। लेकिन सोने से पहले उसको रख दीजिए, तभी हम सुकून भरी नींद ले सकते हैं और तभी हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं।
1: और प्रियंका, शायद मुझे लग रहा है आज के समय में दोस्ती सिर्फ मोबाइल से नहीं, एआई से बहुत ज्यादा हो गई है। हम कुछ भी चीज होते हैं तो 1 सेकंड में अपना मोबाइल निकालते हैं और हर चीज एआई से पूछते हैं, और उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है।
0: जी, बिल्कुल, क्योंकि कंफर्ट जोन में आ गए हैं हम। अगर हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो हम अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहते, तुरंत फोन लेते हैं और सर्च किया हमें सब कुछ बैठे बिठाए ही मिल जाता है। शायद इसीलिए ही एआई का जमाना इतना ज्यादा आ गया है।
1: लेकिन जो बैठे बिठाए मिल जाता है, उस चीज के सही होने की गारंटी कितनी है वो चीज हम नहीं भाप पाते। और इन चीजों को कई बार हम सभी एक दूसरे के दिमाग में बैठा लेते हैं, और बाद में जब पता लगता है असली रिसोर्सेस से, असली जगह से, तो शायद हम कहीं ना कहीं गलत ज्ञान को उठा रहे थे, गलत ज्ञान को अपने दिमाग में बैठा रहे थे।
0: जी, जो चीज बैठे बिठाए मिल रही है उसका हमें नहीं पता वो कितनी सही है कितनी गलत, क्योंकि हमने उसको समय नहीं दिया। हम खुद जो चीज करेंगे, हम खुद जिस बात को सोचेंगे, हम खुद जिस चीज पर ज्यादा समय बिताएंगे, वही चीज ऑथेंटिक होगी, वही चीज सही होगी। समय हर चीज को दिया जाएगा, वही चीज अपनी हो जाती है।
1: तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के साथ चलिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। अगर सही उपयोग करेंगे तो हमारे काम की चीज़, और कहीं ना कहीं हम गलत चीज़ें बिना ध्यान के अपने दिमाग में रख लेते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें ज़रूरत है और उस समय जल्दी जल्दी में हम एआई से या कहीं ना कहीं से डाटा उठा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाके नुकसानदेह होता है। तो प्रमाणित ज़रूर सोर्सेज चेक करें हर चीज़ के।
0: अंततः मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि सबसे जरूरी बात जो मुझे लगती है कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, आप अपने माता-पिता के साथ बैठिए। उनके साथ बैठकर जो आपको सुकून मिलेगा और जो शिक्षा आपको वो देंगे वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बुजुर्ग जो हमें सिखा सकते हैं वो तो शायद हमें किताबों में भी ना मिले।
1: बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो शायद हमें वही बुजुर्ग दे सकते हैं जिन्होंने जिंदगी से सीखा।

0: दोस्तों, जो चीजें हमें किताबें देती हैं उसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, हम उन चीजों को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्गों के पास बैठने से जो अनुभव वो हमें अपने बताते हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1: दोस्तों, हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में ऐसी आ गई हैं, जब हम फिजिकली या मेंटली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो हर चीज शायद पैकेट में बंद होकर आने लगी है। तो वो चीजें बुजुर्गों ने हमें नहीं दी, वो साइंस ने दी है, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट मिलती है। तो जो सेहत के लिए असली प्रोटीन है वो एक तो है खुशी, और शायद वो बुजुर्गों का ज्ञान, जो बुजुर्गों ने हमारे लिए त्योहार बनाए हैं, सब्जियां बनाई हैं, फल बनाई हैं, और उनकी जो रेसिपीज बनाई हैं वही असली सेहत का ज्ञान है। क्योंकि आज भी अगर हम हरियाणा की बात करें तो माँ के हाथ का चूरमा शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने नहीं खाया होगा, और वो सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी खजाना है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कैसे स्वस्थ रहा जाए, एआई से दूर रहा जाए। और श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार। समय है आपसे विदा लेने का। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ।

दोस्तों, अब दीजिए कार्यक्रम नमस्ते हिसार समेटने की अपने रेडियो दोस्त गुंजन ढिंडोरिया को इजाजत। FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है।

आकाशवाणी हिसार के प्रसारण अब आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं और गूगल पर भी अगर आप लिखेंगे 102.3 MHz तो भी हमारे कार्यक्रमों से आप सीधे जुड़ सकते हैं।

आकाशवाणी हिसार के जरिए हम आप सभी तक कार्यक्रम में जो पहुंचाते हैं सूचना शिक्षा और मनोरंजन का एक योग संयोग बनाकर पहुंचाते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सभी को कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप ईमेल्स के माध्यम से, फोन कॉल्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं और आपकी पसंद के बेहद ही खूबसूरत से गीत पहुँचा सकते हैं।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।

0: जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओ, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील

0: न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। पूरी जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनकी देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चले जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे

0: खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तुम्हें आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर

0: पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोजाना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है।

0: दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
2: जी मालिक।
3: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
2: हाथ से निकल गई।
3: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
3: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आपने सुना NCERT एपिसोड 1309 प्रायोजित कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम रंग तरंग।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीत बद्ध किया हुआ ये गाफिल में गीत आवाजी गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम सावरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। ये पेरिस, फ्रांस से महेश सोपरे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सक्लूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल

0: खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है शराबी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में यह था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर, नौका विहार करते हैं। डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। आपसे चंद पलों के इंतजार के बाद आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें, बस चंद पल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के सिवानी के गांव खेड़ा में नई अनाज मंडी में आयोजित हुए खादी रोजगार उत्सव में ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 972 कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने 3645 आधुनिक मशीनें एवं टूल किट भी प्रदान की।

0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर की 22,259 नई परियोजनाओं के लिए लगभग 504 करोड़ 68 लाख रुपए की मार्जिन मनी व सब्सिडी का ऑनलाइन वितरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई भी दी। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के तहत कल सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन पलवल द्वारा जिला सचिवालय में सरकार की अंत्योदय उत्थान और जन कल्याण से संबंधित योजनाओं की विकास प्रदर्शनी एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, SDM भूपेंद्र सिंह, सूचना जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा,
1: आज पारस महिला, गरीब और किसान, उनके लिए किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं के स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया तक हर सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे अभी बाकी हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने 2047 विकसित भारत का संकल्प दिया है, इस पर काम करने का काम कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनी में केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। बादली के गांव मुनिमपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से चयनित किसानों को पुष्प रत्न एवं पुष्प सम्मान पुरस्कार प्रदान कर उन्हें उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में किसानों ने अपनी मेहनत, नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को भी बढ़ाया व दे रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और जैविक खेती, बागवानी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिसर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योगाभ्यास प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि ऋषि मुनियों की खोज योग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया है, जिसे भारत योग में विश्व गुरु बना है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CTT इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार

0: बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1250 रुपए की शुल्क सहित तथा सीनियर सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1300 रुपए के शुल्क सहित 13 से 23 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: मीडियम वेव 200
2: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। दोस्तों, अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र।
3: पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सके, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया, यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल है कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्मा गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नजर में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो है कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला के एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा। गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजी लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य, संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम, परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है, जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य, सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें, क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए तूफानों से विचलित न हो और विश्वास, साहस, धैर्य, सत्कर्म, सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपने जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा लेना। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं, तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के

कच्छ संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पति और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में, और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामे और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लगी जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाज़ ये है मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारी श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पैकेजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर चिंगारी कोई भड़के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है, इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय है और चप्पू चलाता मां जी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर। आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो करा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, जरा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था, पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी नीचे तक स्पष्ट दिखाई

वही एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ। क्या बात है, थोड़ा सा बता दे कैसा लगा आपको वहां घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया माझी मैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है, माझी मैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूं जहां नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे जमाने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया। वो शाम कुछ अजीब थी, उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी, लेकिन वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूं, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी, याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वही श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वही चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूँ वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूँ। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी। नदी पर साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था, पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, जमीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वही एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर भेंट द्वारका गए थे और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए। भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हूं लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदियां चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो इस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी। एक गाना जो अभी आप सुना रहे हैं, वो शाम कुछ अजीब थी, मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखें मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है। सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं। एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी भी है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका

0: तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल विश्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ी, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: उनको पहले से पढ़
1: लेना चाहिए
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज दे रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
0: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद ली जाती है चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसी ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरह की जो चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे
1: हाँ
0: नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए, पिछली बार

0: पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
1: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
0: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप टैबलेट स्क्रीन पर काम करने वाले स्टाइलिश पेन इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
1: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
0: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
1: जो उनको पछतावा है। और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
0: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था।
1: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं,
0: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
0: गीत सुन लेते
1: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
4: हाँ, ये तो है
3: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल,
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी
3: है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
4: तो है।
3: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रही हूँ, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं, तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदी नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है, और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे, और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी

0: में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारे श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं ऐसा कुछ
0: नहीं, नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है अरबी।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूं। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूं, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहां से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूं और जब वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ किसी माँ ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएं हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएं रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है, जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूं, जहां पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो काफी जोश था उस टाइम पे 92-93 की बात कह रहा हूं मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में,

0: मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलूमोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पे मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूं, तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो इंडिया नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नजर से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूं, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूं, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है, तो काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम ही यही आर्म फोर्सेस का कि आपसे आपने इसे एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार। तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: निश्चितानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू शुरू में जब एनडीए पहुंचे, तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ऑफिसर हों चाहे ड्रिल उस्ताद हों, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहां के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह, क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहां, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया, देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहां से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में, मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी, और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूं और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे, 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया। और आगे मेरा मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहां ना होता?

0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छी बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया।
1: मैं आज के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: दो दिन तीन दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, गले लगा ले।
0: पांच महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा,
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने में मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है लुक्का छुपी बहुत हुई।
1: जी जी जी,
0: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। हाँ। एंड वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
1: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी,
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर here who has such kind of ye kahungi main soch hai jiske paas।

आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने, कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके

0: दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया, जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट, यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर, और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए, कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था, और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहां पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन, और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती, खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भागदौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ब्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती, और उस ब्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदिष्ट सोल्जर्स के आज के संक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोचमेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? एक ऐसा मिशन इसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी, पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफी कोर्स

0: बेचते अपने जान देश के लिए निछावर करती। उसमें मेरे एक मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने, तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
1: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहां साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
0: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अवसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लाटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड। एंड तो मेरे को लगता है आपको वो इंग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इंग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना, कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट डी कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूं उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूं, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, ये सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा हमेशा, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉस, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहां पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला, माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
2: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मैं काफी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था, और वो शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, फिर रोई थी वो एक्चुअल में।
2: अच्छा।
1: एंड तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और

0: बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना। ऐसा कई बार कंसल्ट करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूं। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफ कोर्स माय वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हूं भी यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ
0: जाता है। क्या बात है, यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हरपल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूंगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूं कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन, जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल केवीएस तंवर वीएसएम लिख सकता हूं, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती था, ब्रिगेडियर होती थे, जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।

0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
1: आज के युवा को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आए और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम
1: अब आप सुन रहे थे सैनिकों के नाम एक संदेश आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से। शाम के 5 बज चुके हैं। यह आकाशवाणी का हिस्सा हिसार केंद्र है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम थारी मारी पसंद आजाद दुहन के साथ। इससे पहले सुने यह एक संदेश।
2: ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
8: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
7: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
8: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
7: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
8: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
7: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
8: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
9: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

थारी मारी पसंद कार्यक्रम सुनने सारे बन भैया ने आजाद भाई की राम राम। थारी मारी पसंद कार्यक्रम में किस्से कहानी गीत रागनी हम आपके लिए लेके आ करें। गर्मिया का टेम है और वे नलापता पास की लड़ाई का काम चल रहा है, लोग दान की रोपाई की भी तैयारी करने लग रहे हैं। इस बार एक अलग सी चीज देखने में आई, अप्रैल मई और जून में भी बादल वायर बूंदा बांदी कभी गर्मी हो जाए। देखिए गर्मियों का मौसम है, गर्मी में खान पान रेन सेन में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा प्याज लासी शीत राबड़ी का सेवन किया जाए, क्योंकि बरसात का टाइम आने लग रहा है। सारे भाई एक पल्ला गैठ मार लें कि उसमें बरसात के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा, अगर पेड़ लगाओगे तो गर्मी नहीं होगी, क्योंकि जाने अनजाने में जो हमने गलती करी है उसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। तो उसको सही बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावें, धरती को हरा भरा बनावें। और वे आज वीरवार है, वीरवार ने थारी मारी पसंद किस्से की बात हर रागनी के साथ प्रस्तुति आजाद सिंह दुवन, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। कार्यक्रम की पहली रागनी किस्सा अजीत राजबाला में थे। बात उस टाइम की जब राजबाला की इच्छा थी कि उसकी शादी अजीत सिंह के साथ हो जा। राजबाला का पिता इनकार करते हैं और अजीत सिंह को चिट्ठी लिख दी कि मोड़ बांध के आवे थे 20,000 रुपए लेके आइए। लेकिन वह राजबाला अजीत सिंह से शादी करने को तैयार थी। अजीत सिंह के पिताजी का जैसलमेर में एक साहूकार दोस्त था। अजीत सिंह उसके पास जावे है और सेठ जी को कहे कि ताऊ पछाणिया। सेठ बोला भाई थोड़ा थोड़ा पछाणिया। इतनी बात सुन के अजीत सिंह कहने लगा, ताऊ जी मैं अनार सिंह का लड़का हूं, आ रहा मेरे बेटे की कराया। अजीत सिंह कहने लगा, बिगड़ी नीत मेरे सुसरे की, खोटे मन में करे विचार, इसी कसूती चिट्ठी लिख दी मेरी ली आबरू तार। चिट्ठी के मां राम रमीना, ना पूछा दुख सुख काल, घाटे बाधे की ना पूछी बिगड़ी की चाल। उस मानस ने जुलम करे उसने कर दिए कोड कमाल, और चिट्ठी के मां ने लिख दिया मेरी ओढ़ते ब्याह की टाल। जे मोड़ बांध के आना चावे संग में लाइए 20,000, इसी कसूती चिट्ठी लिख के मेरी ली आबरू तार। ताऊ गोली का गा बरजा से नहीं बोल का भरता, खोटा बोल नसूर बने नर तल तल करके मरता, खोटे बोला के कारण में हांडू दर दर फिरता, और कहे का फिकर नहीं मैं एक बात ते डरता, जे रहेगी मेरी मांग कवारी मने के फूकेगा संसार, इसी कसूती चिट्ठी लिख के मेरी ली आबरू तार। सेठ जी कहने लगा, बेटा कोई बात नहीं, चाहे 60,000 रुपये ले जा, पर अपनी बात पे अड़िया रहिए। लेकिन सेठ ने एक शर्त दर दी, जब तक ये रुपये ना उतरे तेरी और तेरी घराली धर्म की बांध रहेगी। बीच में धर्म की कटारी मानिए अजीत सिंह कसम उठावे है, लाला जी जब तक आपका कर्जा नहीं उतर पाओगा मेरे और राजबाला के बीच में धर्म की कटारी रहेगी। अजीत सिंह और राजबाला की शादी हो जाए। जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो अजीत सिंह अपने और राजबाला के बीच धर्म की कटारी दर्दे है। राजबाला ने कहन लगी, न्यू बुझू मैंने साच बता दे, मारी किस्मत माड़ी क्यों है, एक बात का भेद पटाना मारे बीच कटारी क्यों से। अजीत सिंह ने सारी बात बताई

यू लाला जी का कर्जा तालना है। राजबाला कहन लगी, तेरा कल्ले तत कर्जा को ना पाटे, मैं तेरी गेल चालूंगी। और मर्दाने भेष में साथ चल पड़ती है। राजबाला कहन लगी, देखिया इज्जत मोती कैसी आप, पिया मेरा दर्दे नाम गुलाब। राजबाला क्या कहती है उस मौके की बात मास्टर सतवीर बैंसवालिया और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली रागनी भी किस्सा अजीत राजबाला में थे। मर्दाने देश में जब वो राजबाला अजीत सिंह के साथ चाल पड़े है तो राह में एक राजा अपनी अटारी पे देखन लाग रहा, बड़े बढ़िया घुड़सवार है। कहने लगा, तुम कौन भाई? जी हम अक्षत्री हैं। के काम कराया करो हो? नौकरी की तलाश में है। तो फिर क्यों घूमो सड़का पे? कर लो मेरी सेना में नौकरी। अजीत सिंह और राजबाला राजा के नौकरी करने लग जाए। राजा का इतना विश्वास हो गया कि वो अपनी रानी के पास अजीत सिंह और राजबाला को पहरेदार के रूप में रख ले है। कुछ टाइम बीता, रात का टाइम, अजीत सिंह और राजबाला पहरे पे बैठे हैं। मौसम बदल जाए है। मौसम बदले है तो राजबाला अजीत सिंह को क्या कहती है, उस मौके की बात रणवीर सिंह बड़वासनी और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली रागनी की साथ चंद किरण माते। मदनपुर शहर के राजा मदन सिंह चंद किरण के फोटो की खटक में साधु के बेस में चंद किरण के महल के तले दूना लाले है। दूने का दुमा जब चंद किरण की अटारी में पहुंचा तो वह चंद किरण बांदी को पूछे है केस होता है। चंद किरण बांदी को महल के तले भेजे है। बांदी उस साधु यानी मदन सेन को दूना उठाने के लिए कहती है, लेकिन वो बाबा जी तो चंद किरण के फोटो की खटक में था, खूब समझाने पर नहीं मान्या। बांदी और मदन सेन के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं उस मौके की बात प्रेम दयाती और सरिता चौधरी की आवाज में।

तेरी शान पत जागी बिखर ईट मां रूंगी मैगी।

0: दूड़ा रहे जरूरी।
1: पुलिस बुला के बाबा जी कड़े वादू तेरी गरूरी।
0: वो कमरे आ

कार्यक्रम की अगली पेशकश की साई लकड़ारा, गायक कलाकार पासी नैयर और साथी। बात उस दिन की जब वो लकड़ारा रोज जंगल में ते लाकड़ी लिया करता। एक दिन बिना कहने लगी, तू जंगल में ते लाकड़ी ले क्या, मैं तेरे खातिर इतने रोटियां का प्रबंध करूं। लकड़ारा बोला, लाकड़ी तो मैं ईब ले आऊं, यू तो मेरा रोज का काम है। बढ़िया बढ़िया लाकड़ी छांट के लाया। जब बिना ने लाकड़ी देखी और पूछा कि लाला जी इन लाकड़िया ने के बा लिया करे, लकड़ारा बोलिया, बहानी आकर दिन बातां की, मैं लाकड़ी गे रहा हूं और दो टेम की रोटी मिल जा। बिना कहन लगी, तड़के लाला जी ते अपना हिसाब करवा ले। लकड़ारा बोलिया, इन बातां के हिसाब को नहीं हुआ करते, बोली बातां में के दे रहा है। बिना के कहने पे लकड़ारा लाला जी ते कहन लग्या, लाला जी मेरा हिसाब कर दे। लाला जी बोला, रे बोले किस बात का हिसाब, तो लाकड़ी लिया करता रोटी खा लिया करता। इतने में कौन कि वो बिना मर्दाने भेष में लाला जी के पास पहुंच जाए। लाला जी और लकड़ारे के हिसाब करण खातर पंचायत बुला ली। 6 साल का हिसाब कराया तो लाखों रुपए लाला जी ने लकड़ारे को देने पड़े। जब वो लकड़ारा और बिना पैसे लेके चाले तो बिना मन मन में सोचे है, देख काल तक कंगाल थे, एक दिन में किस्मत बदल गई। वो बिना लकड़ारे को क्या कहती है उस मौके की बात पासी नैयर और साथियों की आवाज में।

सतगुरु ने वो परख दिया वो खोटा नारे का, जो मालिक ने वो बढ़ा दिया वो छोटा नारे का। और कार पशु और वो चतुर आदमी वो मोटा नारे का।

मैंने जो कुछ करे रे क्या था, कमा कमा घरे बोलो बिला लेता ओठा दा भरे रे क्या था। और लकड़ी ढोने की वो खातर तन्ने यो करना सरे रे क्या था। और कंगन भी छोटा लिया जो वो गिर भी धरे रे क्या मरदाना।

ಕಟ್ಟಣ ಕತ್ತರಿ ಕೇತು ಬತ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಣ ಕತ್ತರೆ ಕೇತು ಬತ್ತ.

0: कार्यक्रम की अगली रागनी किस्सा माँ भारत में थे। गायक कलाकार बाली शर्मा और साथी बात उस टाइम की, द्रौपदी जब सुदेशना के पास दासी के रूप में रहने लागी, उधर कौन के कीचक अपनी बहन सुदेशना ते पूछे बेबे या कौन, सुदेशना कहे भाईया मेरी दासी है। कीचक कहन लग्या तू इसने मेरे महल में भेज, मैं इसने रानी बनाकर रखूंगा। सुदेशना कहन लगी भाई जो तू सोच रहा है या इसी औरत को न्या, और जे तू मेरा और खुद का भला चाव है तो बोल बाला लेकर जा। वह सुदेशना कीचक को क्या समझाती है उस मौके की रागनी बाली शर्मा और साथियों की आवाज
1: में। जबान चलिया जा ये इस समय तेरा भला से गद्य बिन

ना समझते या पूरी नेम परने की अपने कहे हुए बचनाते या हर गिज नहीं फेरने की और खेत

मर जागी रो रो के।

इसके पतिया का नाम सुनिए ते, इसके पतिया का नाम सुनिए ते, ये बढ़िया बढ़िया योग।

पुरुषों का रचना मुझसे लकड़ी जा सत पुरुषों की टहल करें।

कार्यक्रम की अगली रागनी किस्सा से ताराचंद में थे गायक कलाकार मास्टर सतवीर और साथी। बात उस टाइम की जब वो सेठ ताराचंद उस साधु यानी धर्ममाल की ते मिल्या और घरा चालन की बात करे कि हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। उस मौके की कवि कल्पना मास्टर सतवीर बैंसवालिया और साथियों की आवाज में।

बात गीत की, संगीत की, जमाने की तासीर की। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। आज शिक्षा वो गहना है जो हमें प्रगति के रास्ते पर लेके जाए। बालका ने खूब पढ़ावे, खूब खिलावे, आगे पढ़ने और बढ़ने के मौके दें ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो।

ये रसाक्षर औरे निरक्षर के माँ फरक रहे दिनरात का कोटी तुले मूल्य नहीं से अनपढ़ की औकात का।

0: दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
4: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
2: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
3: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
2: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
3: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
2: वाह, ये तो बहुत

0: जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक PLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर न्यूश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success

0: of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, जिनका रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। साय 6:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत। युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग साय 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा आधुनिक जीवन शैली में बीमारियां और योग से उनका निदान कैसे करें। और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे अपूर्वा और ऋचा। साय 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। और किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होगा आज फोन इन प्रोग्राम, जिसका विषय रहेगा दलहन फसल की पैदावार व तैयारी। और किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर पवन कुमार। कार्यक्रम हमारे गांव आप सुन पाएंगे साय 7:30 पर। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा योगा से मन की शांति और तनाव प्रबंधन। और इसी विषय पर आप सुनेंगे एक वार्ता, और वार्ताकार होंगे प्रक्षित आर्य। कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। और राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुन सकेंगे रात्रि 8:45 पर। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9 से 10 तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। और रात्रि 10 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। आज रात्रि 11 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सीरीज भाग 18।

आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी कार्यक्रम लोक रंग, और कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर। कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे, और प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। साई 5 बजे समय रहेगा कार्यक्रम हेलो हिसार का। युवा उमंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे साई 6:30 पर, और साई 7 बजे खेती किसाना से थी, और 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज। कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संदेश आपके गीत हमारे, और ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना का प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया

0: ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा उपायों, प्रबंधों और शिकायत निवारण तंत्रों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही उन श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है, जो सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए गए थे। श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच के बाद अब संशोधित एवं अधिक मजबूत व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए और रागी जत्थों ने कीर्तन से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के भोग भी डाले गए। अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग और गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब में संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु साहब को नमन किया और उनके दर्शाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंबाला शहर के विभिन्न चौकों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर मीठे जल की छबीलें लगाई गईं। कई स्थानों पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। भिवानी के घंटाघर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी शहीदों के सरताज पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरुपर्व पर गुरबाणी कीर्तन एवं सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीठे पानी की छबील व लंगर की सेवा भी की गई। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की एक अनवरत यात्रा है। आज विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन कर रही हैं।
1: प्यारी साध संगत जीओ, अज जदों असी देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे सक्षम नेतृत्व हेठे एक नवे भारत दे निर्माण कर रहे हैं। असी देश नूं विकसित भारत बनाण दे संकल्प नाल अगे वध रहे हैं। तां गुरु अर्जन देव जी दीआं सिक्ख्यावां साडा वड्डा संबल बन करके सानूं हौसला दे रही हैं। हरियाणा दी ए वीर धरती सदियां तां गुरुआं ते सूरमियां दी धरती रही है। इत्थे दी मिट्टी विच गीता दा ज्ञान वी है अते साडे गुरुआं दे बलिदान की खुशबू भी है। साडी सरकार गुरुआं दे दिखाए हुए मार्ग ते चलण वास्ते पूरी तरह प्रतिबंध है।
0: उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गुरु साहिबान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
1: भावे गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनान की गल हो, चाहे वीर बाल दिवस साथियों साहिबजादा की शहादत घर घर पहुंचाने की गल हो, चाहे करतारपुर साहिब कोरिडोर का निर्माण की दशकां पुरानी मांग नूं पूरी करन होए, सारे प्रयास इस गल दे प्रतीक ने कि अपने गुरुआ का ऋण कदे नहीं भुला सकते हैं। असी प्यारी सात संगत जीओ, पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी तो लेके दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, सारे गुरुआ ने सम्मानता, सेवा, करुणा ते भाईचारे अते सामाजिक न्याय दा संदेश सानू दिता है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में बच्चों को स्कूल से ही सिख इतिहास को जानने का मौका मिलेगा।
2: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ

0: नजदीक जानन दा मौका मिलेगा।
1: उन्होंने कहा कि पंचकूला में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। हरियाणा सरकार मानव सेवा और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान को अपना परम धर्म मानती है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर एक मजबूत और अखंड समाज का निर्माण करने में सहयोग करना होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। केंद्र सरकार गौरवमयी 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज जींद के हमेटी परिसर में किसान यात्रा एवं पशुधन सर्वधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जागरूकता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल सहित जिले भर के अनेक प्रगतिशील किसान व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री तेजेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि आज की इस बहुआयामी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और निरंतर कम हो रहे पशुधन को पुनर्जीवित करना था। कृषि वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से बीजों को शोधित करने तथा जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियों सहित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ड्रोन दीदी जैसे सफल योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को बीज, उपकरण और खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रगतिशील किसान संगठनों और सामुदायिक मार्गदर्शकों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाने के लिए तैयार किया जाता है।
2: आज किसान के जागरूकता सम्मेलन में पूरे जिला से अलग अलग सब डिविजन से किसान आए हैं, एफपीओ के माध्यम से और दूसरे सीआरपी हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, वो विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो आगे किसानों को तैयार करते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ वो अपनी खेती को मोड़ सकते हैं और दूसरे किसानों को प्रेरित कर सकते हैं।
1: कार्यशाला में किसानों द्वारा तैयार प्राकृतिक उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
3: अभी आपने सुने प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत FM 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग, और आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा आधुनिक जीवन शैली व बीमारियां, और योग से उनका निदान कैसे करें, और महारानी लक्ष्मीबाई और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इस विषय में भी आपको बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी अपूर्वा और ऋचा।

0: नमस्कार, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इस बेहद खास युवा कार्यक्रम में हमारे तमाम युवा दोस्तों का, श्रोताओं का मैं अपूर्वा दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज तारीख है 18 जून 2026 और आज के इस खास दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, विमर्श और कुछ बेहतरीन तराने।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा। हमारे जितने भी साथी इस वक्त रेडियो ट्यून करके बैठे हैं, उन सभी को ऋचा का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। अपूर्वा, आज का ये दिन सिर्फ एक साधारण तारीख ही नहीं, बल्कि आज हमारे पास बातचीत के पिटारे में कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे गौरवशाली इतिहास और हमारी भाषा की समझ तक को समृद्ध करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा ऋचा आपने। आज के इस कार्यक्रम के सफर में हम बात करेंगे आधुनिक जीवन शैली से बीमारियां और योग से उनका निदान, साथ ही याद करेंगे इतिहास के उस स्वर्णिम पन्ने को।

0: को जिसने आज हमें आजाद हवा में सांस लेने का हक दिया, यानी महारानी लक्ष्मीबाई और 1857 का महासंग्राम। और हाँ, हमारी पसंदीदा डायरी के कुछ नए शब्द भी आज हम साझा करेंगे।
1: अरे वाह, यानी आज का कार्यक्रम सेहत, शौर्य और शब्द तीनों का एक बेजोड़ संगम होने वाला है, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पड़ाव की चर्चा, जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है।
0: रुचा, अगर आज की युवा पीढ़ी या सामान्य जनमानस को देखें तो हमारी लाइफस्टाइल कितनी बदल चुकी है ना। सुबह देर से उठना, रात को देर तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रखना, फास्ट फूड का बढ़ता चलन और शारीरिक श्रम का कम होना, नतीजा क्या हो रहा है? मोटापा, डिप्रेशन, एंजाइटी और कम उम्र में ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां।
1: तुमने 100% सच कहा पूर्वा, इसे डॉक्टर्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या सिटिंग डिजीज भी कहते हैं। हम कुर्सियों पर या सोफों पर बैठे बैठे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार देते हैं। मानसिक तनाव तो जैसे मुफ्त में मिलने वाली चीज बन गई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसा अनमोल उपहार दिया है जो बिना किसी खर्च के इन सब बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है, और वो है योग।
0: योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है रिचा, ये तो जियो और जीने दो की कला है। योगः कर्मसु कौशलम्, यानी हमारे काम करने के तरीके में जो कुशलता या परफेक्शन है वही योग है। अंग्रेजी में कहें तो एक्सेलेंस इन एक्शन इज योगा। आज जब हम आधुनिक बीमारियों की बात करते हैं तो योग के तीन प्रमुख अंग आसन, प्राणायाम और ध्यान चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठता है तो उसके लिए ताड़ासन या भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को कितनी राहत देता है।
1: और अपूर्वा, मानसिक तनाव और एंजाइटी के लिए तो प्राणायाम संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। जब हम अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, भरपूर मात्रा मिलती है ऑक्सीजन की, जिससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स जो एग्जाम के दिनों में एंजाइटी से गुजरते हैं, उनके लिए तो 10 मिनट का ध्यान पूरी एकाग्रता बढ़ाने का रामबाण इलाज है।
0: बिल्कुल, और योग के साथ अगर हम मार्कटासन या सूर्य नमस्कार जैसी क्रियाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों दुरुस्त रहते हैं। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में ही 12 आसनों का एक संपूर्ण पैकेज है रिचा। क्यों ना हम अपने युवा श्रोताओं से कहें कि कल सुबह से ही सिर्फ 15-20 मिनट अपनी सेहत के नाम करें।
1: अरे बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात कही अपूर्वा तुमने। योग को तो अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए और इस आधुनिक जीवन शैली की बीमारियों को टाटा बाय बाय कहना चाहिए। तो श्रोताओं, सेहत की इस सुंदर बात के बाद चलिए हवाओं में थोड़ा संगीत का रस घोलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और फिर लौटते हैं हमारे दूसरे बेहद महत्वपूर्ण विषय की ओर।

0: अभी आपने सुना प्रेरणादायक गीत। आशा है ये गीत आपको स्वस्थ जीवन अपनाने की प्रेरणा देगा। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज 18 जून है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो आज का दिन भारत के इतिहास में अमर है। आज ही के दिन यानी 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में लड़ते हुए झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। उनका बलिदान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि आज हम जिस आजादी की खुले हवा में सांस ले रहे हैं उसकी नींव कितनी मजबूत है।
1: रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपूर्वा जब भी हम रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस की कल्पना करते हैं। मात्र 29-30 साल की एक युवा महिला जिसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी, पीठ पर उसका दत्तक पुत्र दामोदर राव बंधा था और दूसरे हाथ में नंगी तलवार, उन्होंने उस ब्रिटिश साम्राज्य की चूले हिला दी थी जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। 1857 का संग्राम भारत का पहला स्वतंत्रता समर था जिसने देश में राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया।
0: अद्भुत शौर्य था उनका। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो पंक्तियां हम सबने बचपन से सुनी हैं। बुंदेले

0: बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऋचा, जब झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा करना चाहा, तो उन्होंने गरज कर कहा था, मैं अपनी झांसी बिल्कुल नहीं दूंगी। यह केवल एक राज्य को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह अपनी मातृभूमि के आत्मसम्मान की हुंकार थी।
1: बिल्कुल, और उनके इस साहस ने तात्या टोपे, नाना साहब और मंगल पांडे जैसे अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं को एक सूत्र में पिरोया। भले ही सैन्य दृष्टिकोण से 1857 की क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत के मन में यह डर जरूर पैदा कर दिया कि भारतीय अब ज्यादा दिनों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़े नहीं रह सकते। रानी लक्ष्मीबाई आज की हर महिला और हर युवा के लिए शक्ति और नेतृत्व की सबसे बड़ी प्रतीक है।
0: बिल्कुल ऋचा, और इसी अदम्य साहस को आधुनिक दौर में अपनी ओजस्वी आवाज से पिरोया है देश की जानी मानी कवित्री कविता तिवारी जी ने। उनकी पंक्तियां जब कानों में गूंजती है तो रगों में दौड़ता लहू भी हुंकार भरने लगता है। लक्ष्मीबाई जी के शौर्य को नमन करती हुई उनकी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे इस वक्त याद आ रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त अब पड़े तो बैरियों का बक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए।
1: वाह वाह, क्या बात है अपूर्वा, मजा आ गया। तुम्हारी आवाज ने तो पूरा माहौल ही देशभक्ति के रंग से भर दिया। सच में ऐसी वीरांगनाओं के बलिदान को शब्दों में सपेटना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है ये काम करना।
0: बिल्कुल ऋचा, और जब बात इतिहास के इस शौर्य को बड़े पर्दे पर देखने की आती है तो हमारा बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा है। हमारे आज के युवा दोस्तों ने साल 2019 में आई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जरूर देखी होगी, जिसमें कंगना रनौत ने रानी लक्ष्मीबाई जी का मुख्य किरदार निभाया था।
1: अरे हाँ अपूर्वा, वो फिल्म तो बहुत ही कमाल की थी, और उस फिल्म के विजुअल, वो युद्ध के दृश्य और खास करके उनका बैकग्राउंड म्यूजिक, भारत ये रहना चाहिए सुन करके तो आजकल के युवाओं को इतिहास की वो गौरव गाथा बिल्कुल आंखों के सामने तैरती हुई महसूस होती है। सिनेमा ने रानी लक्ष्मीबाई के उस मणिकर्णिका से झांसी की रानी बनने के पूरे सफर को आज की पीढ़ी के लिए अमर कर दिया है।
0: बिल्कुल सही कहा, सिनेमा जब इतिहास को इस तरह दिखाता है तो युवा उससे और गहराई से जुड़ने जाता है। चलिए देशभक्ति और देश प्रेम के इसी जज्बे को सलाम करते हुए सुनते हैं आज का दूसरा गीत, जो हमारे दिलों में तिरंगे की शान को और बढ़ा देगा।

0: श्रोताओं, गानों के खूबसूरत सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है हमारे आज के तीसरे और आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है मेरी डायरी से। ऋचा, भाषा हमारी पहचान होती है और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना शब्दों से दोस्ती करने जैसा है, तो आज तुम्हारी डायरी में कौन से नए शब्द दर्ज हैं?
1: अपूर्वा, आज मेरी डायरी में हिंदी के दो बेहद खूबसूरत और वजनदार शब्द हैं। पहला शब्द है अदम्य। इसका अर्थ होता है जिसे दबाया ना जा सके या अजय। जैसे अभी हमने बात की ना कि रानी लक्ष्मीबाई का साहस अदम्य था। और दूसरा शब्द है निदान, जिसका मतलब होता है उपचार, समाधान या रूट कॉज को ढूंढकर बीमारी दूर करना। जैसे योग से बीमारियों का निदान संभव है।
0: अरे वाह, अदम्य और निदान दोनों ही शब्द आज की हमारी बातचीत से कितने सटीक जुड़े हुए हैं। अब बारी है मेरी डायरी के दो इंग्लिश शब्दों की, जो हमारे युवा रोजमर्रा की बातचीत या राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला शब्द है रेजिलियंस और इसका अर्थ होता है कठिनाइयों से उभरने की क्षमता या लचीलापन। संकट के समय टूट न जाना ही रेजिलियंस है।
1: ग्रेट वर्ड अपूर्वा। और दूसरा इंग्लिश का शब्द कौन सा है?
0: दूसरा शब्द है होलिस्टिक। इसका हिंदी अर्थ होता

0: होता है समग्र या पूर्ण। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो योग एक होलिस्टिक अप्रोच यानी समग्र दृष्टिकोण देता है जो शरीर और मन दोनों को ठीक करता है।
1: क्या बात है, आज के चारों शब्द सचमुच बहुत ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा साथियों ने इसे अपनी डायरी में जरूर नोट कर लिया होगा।

0: इनको पाएंगे और ये आपकी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे, इसलिए इसे अपनी डायरी में अवश्य नोट कर लें और नियमित रूप से दोहराते रहें।
1: बिल्कुल सही, समय का पता ही नहीं चला रुचा। पर जाने से पहले हमारे सभी दोस्तों को याद दिला दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग अपनाएं, देश के गौरवशाली इतिहास को याद रखें और अपनी भाषा को समृद्ध करते रहें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।
0: चलते चलते ऋचा और अपूर्वा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी हिसार। नमस्कार, जय हिंद।

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी, और कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत आज होगा फोन इन प्रोग्राम, जिसका विषय रहेगा दलहन फसल की पैदावार व तैयारी। किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर पवन कुमार।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइया ने नूर भाई की
1: और सुनीता बन के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता पवन कुमार, और आज हमारा कार्यक्रम है जो वो फोन इन का विषय है वो बता दो सुनीता बहन।
1: बिल्कुल नूर भाई, आज है वीरवार और वीरवार ना अपना आया करें फोन इन कार्यक्रम।
0: जी
1: और फोन इन कार्यक्रम में आज अपने बण भैया गल आप बात करांगे कि दलहनी फसलें जो है
0: जी
1: उनकी पैदावार और तैयारी।
0: जी
1: और अपने बीच में आमंत्रित विशेषज्ञ पहुंच रहे हैं, डॉक्टर पवन कुमार जी,
0: जी
1: सहायक वैज्ञानिक है दलहन अनुभाग चौधरी
0: चौधरी
1: चरण
0: चरण
1: सिंह
0: सिंह
1: हरियाणा कृषि
0: विश्वविद्यालय
1: विश्वविद्यालय से। हाँ
0: इसार से।
1: भाई
0: डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है,
1: धन्यवाद जी।
0: और
1: और नूर
0: फोन
1: भाई,
0: नंबर भी बता दो भैया थे।
1: हाँ नूर भाई सब तो जरूरी है,
0: जी
1: 0-16-62-297-827।
0: जी
1: तो अपने बण भैया तो ये एक रिक्वेस्ट करांगे कि जब भी फोन करे
0: जी
1: तो कई बार नूर भाई अपन रेडियो सुनते सुनते अपने याद आ जाए कि यो सवाल पूछ लिया, तो रेडियो थोड़ा दूर धर के बण भैया ने बात करनी है।
0: जी
1: और आज अपना जो विषय है वो दलहन का है,
0: जी
1: तो इसी विषय पर अपने बण भाई ज्यादातर फोन करें।
0: तो डॉक्टर साहब, काफी एक आज जो है महत्वपूर्ण विषय है, और खरीब जो फसलों के अंतर्गत दलहन जो फसलों की पैदावार और तैयारी को लेके आज हमारा कार्यक्रम है। तो इसमें डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों की एक तो सबसे बड़ी आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इनकी

0: क्या विशेषता है डॉक्टर साहब, आजकल किसान परंपरागत खेती की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, बजाय कि जो हमारी फसल विविधीकरण की अगर बात करें तो उसकी क्या महत्वता है, और दलहनी फसलों में इसकी क्या प्रासंगिकता है, उपयोगिता है?
1: जी, दलहन फसलें आपकी जो आपने बताया है कि फसलों को बदलने में, और यानी कि जो आपकी नेचुरल एग्रीकल्चर है उसकी तरफ है, उसका सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट कारण ये है कि जो हमारी दलहन फसलें होती हैं
0: जी,
1: वो आप काटने के बाद वो अपनी मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, मिट्टी की जो आपकी है उसका यानी कि क्वालिटी है जो आपकी यानी कि वो अच्छी हो जाती है। दलहन फसलों कम पानी में लग जाती हैं,
0: जी,
1: इनके अंदर कम हमें खाद डालनी पड़ती है, और इनके अंदर कब एक कम टाइम के अंदर, छोटे टाइम के अंदर अच्छी यानी कि हम उपज ले सकते हैं। ये इनकी ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस है जी।
0: जी
1: ये हमारे यानी कि प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये
0: जी
1: सिर्फ आदमी की ही स्वास्थ्य के लिए नहीं है, ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी फसलें होती है जी।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात
1: हाँ
0: कही है
1: जी,
0: आपने। क्योंकि देखो, जब अपन दाल लगा रहे हैं, कोई मूंग है, उड़द
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: इसके बाद इसमें जब अपन खेत में बावा है, तो देसी खाद का काम करें डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी,
0: तो डॉक्टर साहब, खरीफ में जो अभी है अपनी दलहन में, कौन सी फसल आऊंगी डॉक्टर साहब?
1: खरीफ में हमारी जो मेन फसलें हैं, जो मुख्य फसलें हैं, वो एक तो मूंग बीन है और एक उड़द बीन है, पर
0: अच्छा डॉक्टर
1: हमारे
0: साहब,
1: एरिया के अंदर ज्यादातर मूंग बीन ही लगती है जी।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: हाँ जी,
0: तो डॉक्टर साहब इनका जो बिजाई का है वो कौन सा उपयुक्त समय रहेगा?
1: इनकी बिजाई का मानसून की पहली बारिश के साथ पूरे जुलाई में इनकी बिजाई करी जा सकती है।
0: जी
1: आप खेत के बत्तर आने के बाद अच्छे से यानी कि इनको बीजा जा सकता है जी।
0: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जब अपन बिजाई करनी है, तो इसमें अपन खेत की तैयारी में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब?
1: जी, दलहन फसलों को लगाने के लिए जी हमें रेतीली या हल्की दोमट मिट्टी चाहिए होती है, और
0: जी
1: हाँ जी, इनके लिए खेत को अच्छे से तैयार करने के लिए खेत को अंदर पहले तो वही है कि अगर बारिश आ गई है तो उसके बाद यानी कि जैसे ही बत्तर आता है खेत, आप उसको अच्छे से तैयार करो
0: हेलो
1: 3 से 4 बार।
0: डॉक्टर साहब, एक फोन।
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ
1: नमस्कार
0: नमस्कार भाई, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, राजकुमार बोलो जी, गांव बारीवास से।
0: हाँ राजकुमार भाई, अपना सवाल पूछो।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार राजकुमार जी, बोला हूँ, बताओ
1: डॉक्टर
0: जी।
1: साहब नमस्कार जी। जी
0: हाँ जी, नमस्कार राजकुमार जी, बताओ अपना प्रश्न।
1: मूंग बोआ, ग्वार बोआ, बाजरा बोआ जी? डॉक्टर
0: ये जी, अब आपकी मिट्टी के ऊपर
1: साहब आपकी आवाज को नहीं आन दीजिए।
0: ये राजकुमार भाई, आपकी
1: आपकी,
0: सही आवाज आन लग रही हमारे पास है।
1: हाँ तो जी आपकी तो को नहीं आन दी सर।
0: अच्छा,
1: अच्छा
0: अब आ रही है जी।
1: हाँ जी,
0: अच्छा, ये जी अब आपकी मिट्टी के ऊपर और आपके एरिया के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा है कि हम खरीफ के अंदर, हाँ, तीनों ही फसलें लगा सकते हैं, ये
1: हाँ
0: आपकी
1: जी,
0: जो जरूरत के हिसाब से और आप अपने खेत के हिसाब से आप यानी कि फैसला ले सकते हो कि आपको कौन सी फसल लगानी है।
1: मेरा जी राम रूम बरसिया जी, बाजरा बुजरा बवांग, कुवार बवांग, मूंग बवा जी, वही पूछा आपने।
0: देखो ये मौसम का तो जी, ये तो वही है जी, अगर आप 2 महीने बाद का अब पूछोगे तो जी कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आप मूंग लगा लो या बाजरा लगा लो, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा जिसमें। हाँ, आप कौन सी, मैं आगे अभी वैरायटीज के नाम बता दूंगा कि कौन सी आपको
1: वैरायटी बता
0: बारिश,
1: दीजिए। अच्छा
0: हाँ वैरायटी जो है आपको MH 1142 है, उस फसल इसको आप वैरायटी को लगाओगे मूंग की को, तो अगर आपकी बारिश आती है, थोड़ा बहुत पानी खड़ा होता है, तो उससे ये बच जाएगी जी मूंग में।
1: जी,
0: तो धन्यवाद राजकुमार भाई फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी की आप बात करा दे जो कर,
1: जी,
0: तो के करा डॉक्टर साहब? अब जैसे भाई ने
1: तो
0: भी बताया था कि भाई बारिश भी आ गई है और खेत कई जगह अपने खाली भी पड़े हैं डॉक्टर साहब।
1: जी इसके लिए यही है जी, खेत को अच्छे से तैयार करना है, 2-3 बार उसमें हैरो लगानी है, फिर उसके बाद सुहागा लगाना है, और खेत का लेवल होना, मतलब कि खेत का बराबर होना, और उसमें बराबर खेत से यह होता है जी अच्छे से पानी की निकासी हो जाती है।
0: जी
1: दलहन फसलों में यही होता है जी, पानी ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए,
0: जी
1: अदरवाइज उससे यानी कि उसकी जड़ें गल जाती हैं। ये कम पानी की फसलें होती हैं आपकी, तो
0: जी
1: ये इन चीजों का ध्यान रखना होता है। किसान अपना 2 से 3 साल बाद जब अगर खेत उबड़ खाबड़ हो जाए तो वो कंप्यूटर गोडीज बोलते हैं, लेजर लेवलिंग बोलते हैं, वो भी करवा सकता है, और खेत फिर

0: इसके बाद हमें ये है कि जब अच्छे से खेत तैयार हो गया, बदतर हो गया है, उसमें तब हमें यानी कि इसकी बिजाई करनी होती है जी।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ज़्यादातर जो आप बता रहे हो कि भाई अपनी बालू मिट्टी वाला है,
0: हाँ जी।
1: क्योंकि जो बाजरा है, फिर अपना चाहे मूंग है, उड़द है, चने हैं, जो इनकी जो ज़्यादातर खेती अपने देसी हिसाब से करा हाँ
0: हाँ
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब, तो वो उसी इलाका में करा जिसमें
0: हाँ जी
1: पानी की कमी हो रहा है,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: और जो बालू रेता वाले खेत
0: हाँ
1: हुए
0: जी
1: हैं
0: हाँ जी
1: जिसमें दूसरी फसलें अपनी लग नहीं
0: लग नहीं
1: सकती,
0: सकते जी।
1: तो
0: हाँ जी
1: ज़्यादातर उसी
0: हाँ
1: एरिया
0: जी
1: में ये करी जाने लग
0: बिल्कुल
1: रही
0: जी
1: है।
0: हाँ जी हाँ
1: तो डॉक्टर साहब कौन सी इसकी उन्नत किस्में होंगी जिसका कि भाई चयन करना है?
0: जी। देखो जी, मूंग बीन के अंदर जी, मूंग बीन जो क्रॉप है, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की भी तीन चार अच्छी किस्में हैं
1: जी
0: और PAU की भी हैं।
1: जी
0: तो इसके अंदर किसान भाई यानी कि MH 421, MH 1142,
1: जी
0: MH 1762 ये
1: जी
0: फसल लगा सकते हैं। इनके अलावा मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि
1: जी
0: इस वक्त MH 1762 की बहुत ही ज़्यादा किसानों के अंदर डिमांड हो रखी है,
1: जी डॉक्टर साहब
0: लेकिन पिछले साल मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से ये
1: जी
0: यूनिवर्सिटी इसका पर्याप्त सीड नहीं बना पाई,
1: जी
0: तो नकली सीड बिक रहा है जी इसका।
1: अच्छा डॉक्टर साहब
0: किसान भाई इस चीज का ध्यान दे, जिस किसी से भी MH 1762 किस्म का बीज ले रहे हैं,
1: जी
0: आप उनसे बिल जरूर पूछे उनसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से लिया था, तो वो बिल जरूर दिखाएं ताकि
1: जी
0: आपको गलत सीड ना मिले,
1: जी
0: मेरी ये किसान भाइयों से। इसके अलावा आप, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी फसल किस्में नहीं लगा सकते हो, सिर्फ एक यही किस्म आपको अच्छा उत्पादन देगी। इसके अलावा हमारी ML 1808 है,
1: जी
0: SML 1827
1: जी
0: है, और हमारा जो दलहन अनुसंधान केंद्र है कानपुर में, उसकी भी दो किस्में हैं, शिखा और विराट, उन्हें भी लगाया जा सकता है और
1: जी
0: इनसे किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब ये जो
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: किस्में बताई है,
0: हाँ जी
1: तो क्या ये अपनी यूनिवर्सिटी के पास उपलब्ध है या फिर अपन बाहर से लेनी पड़ेंगे?
0: जी बिल्कुल जी, ये किस्में यूनिवर्सिटी के पास भी उपलब्ध है
1: मतलब
0: और
1: अभी
0: बाहर
1: किसान
0: SSD
1: भाई
0: से। हाँ
1: खरीदना चाहो तो अपने यूनिवर्सिटी में आके ले जा सके डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, किसान भाई यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हमारा जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमारा राज्य सरकार का बीज वितरण विभाग है, उससे
1: जी
0: भी ले सकते हैं जी किसान भाई।
1: जी डॉक्टर साहब, और अगर डॉक्टर साहब आपका ये कहना था कि भाई बाहर से जब भी आप लेवा तो पक्का बिल लेवा,
0: हाँ, पक्का बिल वही है कि
1: जी
0: असली सीड
1: पक्का
0: लें जी। हाँ
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर साहब फोन। हेलो,
2: हेलो
1: हाँ जी,
2: जी, नमस्कार,
1: हाँ नमस्कार भाई,
2: गांव शाहपुर से बोल रहा हूँ, दलजीत मेनिवाल।
1: हाँ बलजीत भाई स्वागत है आपका, और सवाल पूछो भाई।
2: ये पूछना था जी डॉक्टर साहब से कि सोयाबीन का अगर सोचें तो, क्योंकि थोड़ा सा सेम का एरिया है जी हमारा,
1: जी
2: तो मतलब है उसमें कामयाब या नहीं?
1: जी
0: जी, सोयाबीन आपकी सेम के अंदर कामयाब हो सकती है, लेकिन सिर्फ सेम के अलावा उसमें यानी कि जो हम नूनी ना हो जी उसमें, अगर यानी
2: नहीं
0: कि
2: तो नहीं डॉक्टर
0: हाँ जी हाँ नूनी ना हो तो हो सकती है। और सोयाबीन का जो सीड है जी, आपको यानी कि हमारे बीज वितरण विभाग जो है हरियाणा सरकार का है, वहां से मिल सकता है जी सोयाबीन की किस्मों का। बाकी आपको जो भी
2: साहब।
0: जानकारी सोयाबीन की स्पेशली चाहिए हो, वो आप यूनिवर्सिटी में आके या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करके आप पूछ सकते हो जी।
2: जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्योंकि 2 एकड़ में अपने पास अमरूद का बाग था जी,
0: जी।
2: और वो लास्ट ईयर थोड़ा सेम आ गई थी और बारिश ज्यादा है कारण वो
0: हाँ
2: डर
0: जी
2: गया, तो ये मैंने उसको निकाल दिया।
0: जी
2: तो उस खेत में सोच रहे थोड़ा सा ऊपर था वो दूसरे खेत से, तो
0: हाँ जी
2: मैं जी 2 एकड़ में चलो सोयाबीन का करें तो।
0: जी जी आप कर सकते हो, सोयाबीन का भी है, या आप यानी कि उसमें अब इस बार जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप मूंग बीन भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो
2: जी
0: वो भी हो जाएगा आपका। जो मैंने किस्म बताई है MH 1142 है, वो आपका अच्छा पैदावार दे देगी जी।
2: तो ये डॉक्टर साहब अपनी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है मतलब सोयाबीन का बीज?
0: सोयाबीन का जी हाँ, आपको यानी कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का भी जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर फोन कर लीजिएगा कि बीज बचा हुआ है, तो आपको जरूर मिल जाएगा जी। हाँ जी
2: ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू।
1: धन्यवाद भाई फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो किस्मों की आप बात कर रहे थे उसमें कि भाई जब भी अपने बाण भाई कहीं से भी बीज ले हुए तो
0: हाँ जी
1: उसमें ये जरूर देख लें
0: हाँ जी
1: कि बीज
0: उसमें
1: कहीं
0: हाँ
1: नकली
0: नकली ना
1: बीज,
0: हो। हाँ जी,
1: नकली
0: नकली
1: बीज
0: बीज
1: ना।
0: ना हो जी,
1: जी
0: नकली बीज का से समस्या ये हो जाती है।
1: फोन ले लेते।
0: हाँ
1: हेलो,
2: जी, मैं करण सिंह सोराण, गांव शिकारपुर से, नीता बहन और नूर भाई और डॉक्टर साहब को फोन को मेरी राम राम जी।
0: राम
2: आपको
0: राम
2: भी
0: जी।
1: भाई बहुत बहुत राम राम, और स्वागत है
2: अरे
1: भाई आपका कार्यक्रम में।
3: हाँ जी, बारिश हो रही है, हमारे 5-4 आंगन तो मूंग की बिजाई हो

0: एक खेत सेम का है जी, उसमें मूंग की बिजाई हो सकती है जी?
1: ना जी, सेम के खेत में तो नहीं होगी जी आपके, लेकिन हाँ बारिश हो गई है इसके अंदर, आप यानी कि नमी सूखने से पहले यानी कि आप इसकी बिजाई कर दीजिए, आपका
0: तो
1: जरूर अच्छा
0: सेम वाला
1: रहेगा।
0: नहीं होगा जी?
1: ना जी, सेम वाले में तो ज्यादा सेम वाले में नहीं होगा जी। अगर आपका सेम का क्या है कि आप उसको टेस्ट करवा लीजिए।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, टेस्ट करवा लीजिए, उसके हिसाब से आपको पूरा अच्छे से रिपोर्ट मिल जाएगी, आप कौन सी फसल लगा सकते हो कौन सी नहीं लगा सकते हो।
0: हाँ जी। दूसरे बहुत इसकी बीज की मात्रा कितनी जी, कितना खाद डालें जी? अच्छा,
1: बिल्कुल, मैं अभी उन्हीं चीजों पे आ रहा था जी। इसकी बीज की मात्रा प्रति एकड़ आप 4 से 5 किलो सीड डाल सकते हो मूंग बीन का।
0: हाँ जी सर।
1: हाँ जी,
0: हाँ, रोज खाद की मात्रा जी?
1: खाद की मात्रा जी देखो, जो एक आम खाद की मात्रा होती है जी, वो तो आपकी है जी, इसमें आप 15 से 20 किलो यूरिया
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: 2 कट्टे SSP के डाल दो, यानी कि 100 किलो
0: अच्छा
1: SSP प्रति एकड़ के हिसाब से। हाँ, इसके अलावा आप अपने अगर मिट्टी की जांच करवा रखी है आपने, तो उसमें जो मिट्टी में जो कमी है उसके हिसाब से हमें यानी कि खाद डालनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारी फसल के अंदर उसमें जिप्सम की कमी है, तो हमें जिप्सम डालना पड़ता है जी।
0: धन्यवाद सर जी,
1: ठीक है
0: धन्यवाद
1: जी।
0: भाई फोन करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, बीज किस्मा की अपन बात कर ली है, ये
1: जी,
0: बीच में एक जो जरूरी चीज है कि किस्में अपन ले ली है, तो बीज उपचार कितना जरूरी है डॉक्टर साहब
1: बीज उपचार बहुत ज्यादा जरूरी है। बीज
0: जी?
1: उपचार से आपका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छा आता है, उसके बाद जो मिट्टी के अंदर जो बीमारियां होती है बीज उपचार उससे भी बचाता है।
0: जी
1: और जो
0: हेलो, हेलो, सुनीता बोल रहा। राम राम। हाँ, राम राम भाई, आपने भी?
2: मुन्ना बोल रहा था, गांव वाला
0: हाँ मुन्ना भाई, अपना
2: नूर भाई
0: स्वागत।
2: ने। राम राम। हाँ
0: हाँ, नूर भाई ने भी राम राम दे दी भाई।
2: जी,
0: तो
2: डॉक्टर साहब से बात कराओ एक बार।
0: हाँ,
1: हाँ
0: डॉक्टर
1: जी,
0: साहब
1: बताओ जी।
0: पे है भाई फोन
2: राम राम
0: पे।
2: डॉक्टर साहब।
1: राम राम जी।
2: ये डॉक्टर साहब, गुडविल का बाजरा बोया है, इसकी कितनी पैदावार है?
1: गुडविल का बाजरा जी, देखो इसका मैं आपको दलहन फसलों के बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा जी, और बाकी इसकी जो पैदावार है जी आपकी यानी कि आपकी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करती है, उसके बाद आप कितने अच्छे से उसकी देख रेख करते हो उस पर भी निर्भर करती है
2: अजी,
1: आपकी आपकी देख रेख के ऊपर निर्भर करती है जी, आप कितनी ज्यादा इसकी उपज ला सकते हो जी।
2: माटी तुम्हारी बालू रेत की है
1: हाँ
2: जी,
1: जी, हाँ जी,
2: पानी थोड़ा नमकीन है?
1: हाँ, नमकीन पानी है ना जी, देखो जी वो है जी, इन चीजों का ध्यान रखना होता है। आप बाकी इसमें सिर्फ जो बीमारियां हैं या कीड़े हैं उनका ध्यान रखो तो आपकी उपज इसके अंदर आ जाएगी जी, आपकी अच्छी आ जाएगी आपकी इसकी।
2: किस्म बढ़िया है डॉक्टर साहब?
1: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है किस्म जी, ठीक है।
2: अजी,
1: हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया है।
2: 8-10 क्विंटल पैदावार सर है इसकी? हाँ
1: 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ बोल रहे हो जी आप?
2: जी।
1: हाँ, आ जाएगी जी इसकी।
2: अजी, इसका टाइम कितना ही दवा हलावण का,
1: हाँ जी,
0: मतलब बिजाई का टाइम कब
1: टाइम
0: कितना
1: इसका जी,
0: ही
1: ये भी
2: दवा?
1: आप यानी कि आप ये 15 जुलाई तक कभी भी लगा सकते हो जी, अभी बारिश आने के बाद यानी कि आप कभी 15 जुलाई तक कभी भी लगा लो।
2: बारिश कब तक आ रही जी?
1: बारिश तो
2: मौसम
1: अभी
2: कैसा भी कर रहा है?
1: मौसम का तो ये बताएंगे जी, अभी
0: बारिश तो
1: बारिश तो
0: चल
1: अभी
0: ही
1: चल
0: रही
1: रही है,
0: भाई,
1: चल ही
0: खिले
1: रही है
0: खिले
1: जी।
0: तो
1: हाँ,
0: आज भी। हाँ
1: बारिश तो चल ही रही है जी, कहीं कहीं तो हो भी रही है बारिश जी।
2: जी, इशार में है बंदा की?
1: हाँ जी,
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: इशार
1: रही है
0: में है
1: जी।
0: भाई आज। अश्विनी
1: हाँ जी,
2: का बड़ा पशुओं प्रोग्राम कर दोगे आप? हाँ
0: पशुओं वाला?
2: जी,
0: भाई आप ती एक दिन पहले बतावांगे, पशुओं का प्रोग्राम आओगा उसमें, क्योंकि जब अपना 6 बजे से रेडियो में बताओ ना कि कल के क्या होगा, तो एक दिन पहले का भी बताओ भाई उसमें।
2: हाँ, ये पशुआ प्रोग्राम भी दिया करो।
0: हाँ बिल्कुल भाई, बहुत जरूरी है। देखो, खेती के साथ साथ पशु तो अपने दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं भाई।
2: ठीक है, बड़ा राम राम।
0: हाँ, राम राम भाई, आपने भी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बीज उपचार की जो अपन
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: करा थे, कि
1: जी
0: एक तो बीज उपचार जो अपन मार्केट से लेके आए हम,
1: हाँ जी,
0: उसका भी करना जरूरी है, या फिर कई बार डॉक्टर साहब बीज जैसे हमारी एक, हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी,
0: हाँ नमस्कार भाई,
2: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
0: हाँ राजू भाई, आपका स्वागत है और सवाल पूछो।
2: मैं यही पूछना चाहता हूँ जी, ये हमारे भादरा की साइड में मूंग बिल्कुल अच्छे होते हैं, जमीन का फर्क है या बीज की क्वालिटी का है?
1: जी बिल्कुल जी, ये जमीन का भी फर्क है जी, आप लोगों की जो जमीन है वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है जी।

0: साइड का और जो अपना
1: गाँव हमारे कम होते हैं इतने नहीं, वहाँ 18-20 मन एकड़ के बताते हैं।
0: कहाँ जी? दोबारा दोबारा
2: की तरफ,
1: भादरा की तरफ से हमारे से।
0: हाँ जी हाँ जी
1: 25 किलोमीटर।
0: हाँ जी देखो जी, उसके जी दो तीन कारण होते हैं। सबसे पहला तो होता है जी मिट्टी का है जी, मिट्टी कैसी है जी, और दूसरा होता है जी आपके मिट्टी के बाद रख रखाव कैसा कर रहे हैं जी उसका। और मैंने जो बताया कि वहां पे जो जिस मिट्टी के अंदर से पानी की निकासी बड़ी अच्छी हो, वहां पे मूंग बड़ा अच्छा लगता रहता है जी।
1: और वहाँ जो घर का बीज है जी ज्यादातर वही बोते हैं, कोई किस्म कोई थैली वगैरह का भी नहीं लेते
2: जी।
0: देखो जी, दलहन फसलें क्या है आपकी, इनमें हम किस्में बनाते हैं। जो किस्में हैं उनका बीज आप 3 से 4 साल तक बार बार यूज कर सकते हो। इसलिए इस अगर कोई किसान भाई हमसे लेके जा रहा है तो मैं खुद ये बात बोलूंगा कि आप बीज जो आपने फसल लगाई उसी में से बना लो। बार बार आपको यूनिवर्सिटी पे या किसी महंगा बीज प्राइवेट से भी नहीं लेना पड़ेगा। दलहन फसलों में आप एक बार बीज लिए हुए को बस थोड़ा सा ध्यान रखो, उसमें से आप खुद से ही अच्छे पौधे हैं जो उनको अलग से निकाल के रख लो, उनका बीज यूज करो इस्तेमाल करो तो आपके यानी कि चल जाता है जी वो बिल्कुल घर का बीज जी।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद भाई फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, बीज उपचार की जो मैं एक सवाल मेरा था,
0: हाँ जी
2: मैं ये पूछ रही हूँ कि भाई आमना जो मार्केट से लेके आवा उसका उपचार करने की भी जरूरत होती है क्या?
0: जी, अगर कुछ लोग तो हैं जी कुछ उपचार करके दे देते हैं
2: जी
0: और कुछ यानी कि नहीं देते हैं,
2: जी
0: ठीक है जी, वो उनके पैकेट्स पे भी लिखा हुआ होता है जो भी उपचारित है नहीं है
2: जी।
0: अगर बीज उपचारित नहीं है तो उसको उपचारित करें
2: जी।
0: है? अगर वो पहले से उन्होंने उपचारित बीज दिया है तो उसकी जरूरत नहीं होती है जी उपचारित करने की, ठीक है। इसमें जी जो बीज उपचारण है, एक तो जो बीज का यानी मैंने बताया कि उसमें आपका जो अंकुरण है वो अच्छा आता है
2: जी,
0: जो आपकी जो जड़ गलन वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाता है
2: जी,
0: और जो आपकी फसल के शुरुआती दौर में है जो पत्तों को सोखने वाले जो कीड़े आते हैं उनसे भी बचाता है
2: जी।
0: तो इसमें जो बीज उपचार का जो उपाय है उसके लिए किसान भाइयों को बहुत ध्यान देना होता है कि किस तरीके से करना है। तो इसको ध्यान से किसान भाई को भी मैं चाहूंगा ध्यान से सुने कि सबसे पहले वो इमिडाक्लोप्रिड का यानी कि 5 ml पर kg से बीज उपचार करें
2: जी।
0: ये आपके जो शुरुआती दौर में कीड़े आते हैं उससे बचाता है
2: जी।
0: उसके बाद थीरम 5 ग्राम पर kg या फिर कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर kg का बीज उपचार करें
2: जी।
0: ये जो है दोनों के दोनों बीज उपचार है आपकी फसल को जड़ गलन की जो समस्या है उससे बचाते हैं। उसके बाद जो तीसरा बीज उपचार होता है वो होता है राइजोबियम टिक्के का जी, है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जाता है और हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर से मिल भी जाता है जी,
2: जी।
0: इसके लिए किसान भाइयों को 50 ml का जो राइजोबियम का टिक्का है,
2: जी।
0: है वो प्रति एकड़ के जो यानी कि सीड है मतलब कि हमारा जो 5 से 6 किलो सीड है
2: जी
0: उसके अंदर एक टिक्के का इस्तेमाल करना होता है। उसमें आप किसान भाइयों को जो 50 ग्राम जो गुड़ है उसे सिर्फ 200 ml पानी में
2: जी। डॉक्टर साहब एक बार फोन ले लेते हैं। हेलो,
3: ठीक है मैडम? राम राम।
2: हाँ राम राम भाई, आपने भी
3: ठीक है मैडम? मैं दोबारा से मुन्ना बोल रहा था, एक छोटा सा आपसे सुझाव देना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो।
2: हाँ बिल्कुल भाई, मुन्ना भाई जरूर बताओ।
3: जैसे जी अपना यो आप देते हो कार्यक्रम हमारे गाँव है यो।
2: हाँ भाई,
3: यो जी एक तो इसका थोड़ा समय बढ़ा दियो, और एक जी इसका मतलब लाइन एक हाफ ना, इसकी दो लाइन चालू कर दी, एक लाइन ये हम मिला को नहीं, कई बार हो गया बाट देखते देखते पूरा हो।
2: हाँ बिल्कुल भाई, मुन्ना भाई बिल्कुल आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और हमारे डायरेक्टर साहब भी ये प्रोग्राम सुनते हैं।
3: तो एक लड़ तो भाई 5 मिनट लाएंगे सवाल जवाब
2: करते, बिल्कुल
3: थोड़ा रह गया है इसलिए कार्यक्रम का एक तो टेम बढ़ा और एक दो लाइन शुरू करो, एक इसका जीजन बंद दो जैसे दूसरा और चौथा वीरवार तो कर दे पशुपालन का और पहला तीसरा पांचवा खेती बाड़ी का कर दे, इस तरह से कार्यक्रम चलाया करो जी।
2: ना बिल्कुल सही बताई है भाई आपने और हमारे डायरेक्टर साहब भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, जितने रेडियो पे यहाँ स्टाफ है सारे सुन रहे हैं और हमने भी आपका आपका नोट कर लिया है, जो सुझाव आपने दिया है भाई हम उनको बिल्कुल नोट करवाएंगे ये। तो जी डॉक्टर साहब, तो इस बात एक बात तो है डॉक्टर साहब कि हमारे भाइयों ने कितनी जरूरत है इस चीज की,
0: बिल्कुल जी
2: कि
0: बिल्कुल
2: भाई
0: है।
2: अपनी बात घर बैठे बैठे आप अपना खेत
0: हाँ
2: में
0: जी
2: के दिक्कत है उसके बारे में
0: हाँ
2: पूछ
0: जी
2: कहाँ सीधे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जी
0: तो इसमें ये बीज उपचार का मैंने बता दिया, राजोवियम टिक्के का जी, तो 50 ग्राम गुड़ को 200 ml पानी के अंदर अच्छे से घोल लें, और उसके बाद जो है जो 50 ml कल्चर है उसे पूरे को, यानी कि जो एक एकड़ का जो सीड बीज है जी हमारा 5 से 6 किलो है, उसको अच्छे से यानी कि उसके ऊपर ले लगा दें और उसको छाँव के अंदर सुखा के अगले दिन बिजाई कर सकते हैं जी।
2: जी डॉक्टर तो
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ नमस्कार जी,
2: हाँ
1: क्या बटू कला से बोलो
2: हाँ
1: जी।
2: नमस्कार भाई, कार्यक्रम में स्वागत है और सवाल पूछो भाई।
1: हां जी, के विषय जी आज है।
2: आज अपना ये जो भाई फसल है अपनी दलहन फसलों की पैदावार और अपन खेत की
1: अच्छा
2: तैयारी भाई।
1: अच्छा तो कद भी देने चाहिए दलहन फसल जी। अब
2: अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई जुलाई का महीना अपना।
0: जुलाई के महीने में जी आप पूरे में लगा सकते हो जी, इसमें बारिश आने के बाद आपके खेत के बदतर
1: हेलो
0: आते ही जी, मैंने कहा मानसून की पहली बारिश के बाद जी आप बदतर आने पे कभी भी लगा सकते हो
1: हेलो
0: जी जुलाई के महीने
2: भाई,
0: में।
2: आप मन नु लागे जनु फराटर दौरे बैठे हो।
1: ना जी, फोन तो अल्लाह बार ना करना बैठे हूँ मैं तो,
2: हाँ बस फिर
1: हवा तो अल्लाह
2: अवल
1: दौर की जी।
2: आवाज सुनने लग रही है
1: हाँ
2: आपकी फोन में भाई। भाई डॉक्टर
0: जी
2: साहब ने ये बताया है कि अगला जो महीना है पूरा महीना आपा कदे भी लाश का। हाँ
0: बिल्कुल जी, इसको जी अब जैसे अभी भी बारिश चल रही है जी, अभी भी अगर बदतर आने के बाद लगा सकते हैं और जुलाई के पूरे महीने के अंदर लगा सकते हैं जी।
2: जी डॉक्टर साहब,
0: हाँ जी
2: तो बीज उपचार का हो गया डॉक्टर साहब। तो
1: नमस्कार जी, जमीर
2: हाँ नमस्कार भाई।
1: प्रजापत बोलूं जी, गांव सांगा।
2: हाँ स्वागत है भाई जयवीर आपका, और सवाल पूछो भाई।
1: अच्छा जी एक बात बताओ, ये पेट पर
2: डॉक्टर साहब लाइन कट गई है उनकी। तो डॉक्टर साहब अपना फिर तोड़ कर लें क्योंकि टाइम थोड़ा रह रहा है।
0: जी जी
2: तो डॉक्टर साहब इसमें बीमारी के आस का है और अपन
1: हाँ नमस्कार भाई जी,
2: हाँ नमस्कार भाई।
1: जावेद प्रतापत बोल रहा जी, कट गया था।
2: हाँ हाँ हाँ भैया बोलो।
1: डॉक्टर साहब को राम राम। सर
0: राम राम जी।
1: एक बात बताओ, बादाम का पेड़ है और बहुत बढ़िया पेड़ है, आवाज
2: अच्छा भाई
1: कौन नहीं आ रही जी फोन पर आपकी,
2: नहीं नहीं आपकी आवाज सुन रहे हैं भाई।
1: उसका जी पाया तो ऊपर के आम लगा
2: अच्छा भाई
1: है। अच्छा अरे रहा नहीं सोच रहे, बिल्कुल ठीक है, ऊपर पकाने की कोशिश करा ना तो पीड़े किनार गट जा, जी पड़ जाए कीड़े पड़ जाए उनमें।
2: अच्छा भाई
1: बहुत बढ़िया आम लगा है, अरे रहा इतना बिल्कुल ठीक है ना।
2: तो जयवीर भाई आज अपना डॉक्टर दूसरा आ रहा है, तो
1: अच्छा
2: इसके बारे में आप अपना जो टोल फ्री नंबर हुआ है ना भाई, जो उस
1: हाँ
2: पर
1: जी
2: फोन करके पूछ लियो, क्योंकि डॉक्टर साहब आज अपने दाल चावल वाले हैं भाई।
1: हाँ जी, तो बात कर लो जाता से फिर माने जानकारी हो तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया।
2: ना ना डॉक्टर साहब ने बोले भाई मेरे समझ की बात को नहीं, आप दूसरे डॉक्टर से बात करियो।
1: ना जी वो बिल्कुल हो
0: ना जी,
1: मेहरबानी,
0: देखो जी
1: प्रोग्राम मचा
0: नहीं
1: सजा है बात
0: नहीं
1: की।
0: जयवीर जी, जयवीर जी सुनिए, जब भी कोई भी बीमारी होती है या कीड़ा होता है ना जी, उसे देखे बिना हम कोई भी आपको बता दें उपचार तो वो शायद सही ना हो। तो मेन ये होता है कि जो भी आपकी समस्या है उनकी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, किसान भाई मेरे को फोटो भेजते हैं जो उनकी बीमारी है या जो कीड़ा है, तो आप उनकी वो फोटो भेज दो ताकि हम सही समस्या को देख के उसका जवाब दे सकें।
2: जी तो डॉक्टर साहब भाई ने अपना जवाब सुन लिया होगा।
0: हाँ जी,
4: तो डॉक्टर साहब जैसे आज का जो हमारा विषय रहा जो दलहनी फसल है,
0: हाँ जी
4: दलहनी फसलों को और किस तरह से डॉक्टर साहब इनका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन जैसे हम दूसरी सब्जियों का करते हैं या कोई और है, जैसे इसमें कुछ ऐसी भी मतलब उन प्रक्रियाएं हैं डॉक्टर साहब कुछ जैसे।
0: देखो, दलहन फसलों के लिए तो जी भारत सरकार ने ही आत्मनिर्भरता यानी कि मिशन चलाया है जी, अभी
4: जी
0: दलहन फसलों के अंदर हमारा जो दलहन फसलें हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए, और उनका यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसके लिए भारत सरकार ने ये भी किया है कि जो उड़द की जो यानी कि उत्पादन है उसको पूरे MSP पे खरीदा जा रहा है काफी राज्यों के अंदर, है तो ये है। दूसरा है जी, इनका जो

0: हमें स्टोर करना होता है, जो इनको रखना होता है, जो आप बोल रहे हो कि दलहन फसलों को रखने के लिए इस चीज का ध्यान रखा जाए कि वहां पे नमी ना हो,
1: भंडारण
0: में नमी ना हो
1: जी,
0: और जो हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो
1: जी।
0: हाँ, इनके अंदर दलहन फसलों में अपने यानी कि एक बड़ी समस्या आती है जी, ढोरा बड़ा लग जाता है,
1: बिल्कुल
0: ढोरे की आती है, तो उसकी वजह से, तो उसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारा भंडारण है उसको अच्छे से साफ रखें
1: जी, बिल्कुल डॉक्टर,
0: उसको अच्छे से साफ करें, अगर पहले से उसके अंदर ढोरा वगैरह कुछ भी था तो उसके लिए हम यानी कि पहले स्प्रे करें खाली भंडारण में और फिर उसके अंदर हम अपना स्टोर करें जी।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब अब अपना टाइम होने लग रहा है, तो चलते चलते हमारे किसान भाइयों ने के संदेश देना चाहोगे?
0: किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा जी, दलहन फसलों के अंदर आप कम से कम समय में, कम से कम आप यानी कि खाद डाल के, कम से कम आप यानी कि खर्चा करके अच्छी फसल ले सकते हो, जो सिर्फ अपने खाने के लिए हमारा ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं करती है, आपकी जो जमीन है उसका भी स्वास्थ्य अच्छा करती है। तो किसान भाई इसे दलहन फसलों को एक बार जरूर लें अपने खेत में।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बताया कि भी अपने मनुष्य के सेहत के लिए और धरती की सेहत के लिए दोनों के लिए उपयोगी ये दो दलहनी फसलें हैं उसको बनाती हैं, और किसान भाई बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जैविक तरीके से इनका उत्पादन लें, अपने सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी बनाए रखने का काम करें। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और किसान भाइयों को इतनी ज्ञान और लाभ की जानकारी आपने प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो नूर भाई,
2: और इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी का समय समाप्त होया, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: और नूर भाई थोड़ी आन में फिर अपन बन भाइयों तो मिलेंगे कार्यक्रम हमारे गांव में।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
4: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महारे गांव।

0: मारेगांव कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करे हैं नूर भाई
1: और सुनीता बहन।
0: तो सुनीता बहन, देखो आजकल राम ने बूंदाबांदी का मौसम भी कर दिया है और बहुत सुहावना मौसम हो रहा है।
1: बिल्कुल भाई।
0: और इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी के लिए देखो अपने जो मौसम है बहुत ही अनुकूल है। और फसल की उसके लिए दृष्टि से भी बात करें और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मौसम बहुत अनुकूल चल रहा है। और आगे जैसे योग दिवस आ रहा है, विश्व योग दिवस
1: 21 जून ने?
0: जी
1: हाँ भाई।
0: तो उसकी तैयारियों के लिए पूरा जो अपने प्रशासन है, सरकार है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। और इसी विषय को लेके योग से मन की शांति और तनाव प्रबंधन विषय पे जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं परीक्षित आर्या जी। इनसे हम भेंट वार्ता सुनाएंगे।
1: हाँ
0: तो सुनें ये भेंट वार्ता।
2: दिवस के रूप में श्रोताओं, वो योग जो हमारे ऋषि मुनि कंदराओं में गुफाओं में बैठकर किया करते थे, उसके महात्म्य को पूरी दुनिया ने पहचाना और फिर शुरुआत हुई योग दिवस को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने। और जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात है तो बता दें कि इस वर्ष की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी यह हमें बताता है कि बढ़ती उम्र के साथ किस प्रकार हम शारीरिक और मानसिक रूप से न केवल स्वस्थ बल्कि सक्रिय भी रह सकते हैं योग की मदद से। तो योग के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, तनाव के बारे में और तनाव प्रबंधन के बारे में बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परीक्षित आर्य जी। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक हैं, साथ ही साथ संबंधित हैं AOL से पिछले 15 वर्षों से योगाचार्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। और जब भी बात होती है योग से जुड़ी जानकारी की, क्या नया चल रहा है, कौन कौन सी सावधानियां रखें और किस प्रकार अपने शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में योग की मदद लें, ये जानकारी बखूबी बताते हैं परीक्षित जी। तो आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं परीक्षित जी से। परीक्षित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद रश्मि जी।
2: सबसे पहले तो जैसा आप बता रहे हैं माइंडफुलनेस, ये जो टर्म है, ये जो विचारधारा है, ये सुनी हुई सी तो लगती है, लेकिन सच कहें तो इसका मतलब क्या है, हम में से कुछ लोग ही जानते होंगे, क्या होता है माइंडफुलनेस?
3: माइंडफुलनेस रश्मि जी बेसिकली एक वेस्टर्न अवधारणा है हमारे पुरातन ज्ञान की। हमारे ऋषि मुनि बहुत हजारों वर्षों से मन को वर्तमान में रखने और सजगता के साथ जीवन जीने के ऊपर जोर देते आए हैं, और वही माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का अर्थ यही है किस तरीके से हम अपने जीवन को, मन को वर्तमान में रहकर पूरी सजगता के साथ हर पल को जी सकते हैं, वही माइंडफुलनेस है।
2: बिल्कुल सही कहा, दिमाग तो हम सभी के पास है, ध्यान भटक जाता है, सोचते कुछ और है, करते कुछ है, और जो दिमाग है, ध्यान है, वो कहीं और भटक रहा होता है। ये समस्या ना केवल बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, या सच कहें तो समाज के सभी तबकों की होती है कि शरीर कहीं होता है और ध्यान कहीं भटक रहा होता है। फिर शिकायत होती है खुद से कि हम अपने ध्यान को अपने नियंत्रण में नहीं रख पा रहे, तो क्या करें कि माइंडफुलनेस हम कर पाए?
3: माइंडफुलनेस, जैसे अभी हमने बात की, माइंडफुलनेस क्या है, वर्तमान में पूर्ण जागरूकता के साथ और सजगता के साथ जीवन जीना ही माइंडफुलनेस है। जब हम योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो होता क्या कि जो हमारा ध्यान है, हमारा मन है, वो भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से हटकर वर्तमान में केंद्रित हो जाता है। और जैसे ही मन वर्तमान में केंद्रित हुआ, उसी स्थिति में हमारा तनाव तुरंत कम हो जाता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो मन को वर्तमान में जब हम रखते हैं, मन का स्ट्रेस जो है वो बेसिकली दो ही चीजों से है। जब हमारा मन वर्तमान में नहीं है, भूत और भविष्य के बारे में सोच रहा है, तभी वो स्ट्रेस्ड होता है। वर्तमान में यदि हम रहेंगे तो मन में कोई तनाव या किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तनाव तभी आता है जब हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे ही हमारा जो मन है कभी भूतकाल में गया और कभी भविष्य में गया। जब हमारा मन भूतकाल में गया तो तो उसको रिग्रेट होता है, भविष्य के में जो गलतियां की उसके प्रति वो पश्चाताप का अनुभव करता है कि ये गलतियां होगी, नहीं करनी चाहिए थी। और जब हमारा मन भविष्य में जाता है तो उसको भविष्य के प्रति आशंकाएं, चिंताएं पैदा हो जाती हैं, जबकि जीवन तो हमारा जो है जीवन वर्तमान में ही चल रहा है और वर्तमान में ही रहकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से पूरी माइंडफुलनेस के साथ जी सकते हैं। और इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं योगसु कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म, हर कर्म को कौशल के साथ करना ही योग है। और कौशल के साथ किसी भी कर्म को हम तभी कर पाएंगे जब हमारा मन पूरी तरह से उसमें केंद्रित हो, पूरी तरह से वर्तमान में हो, तभी हम पूरी एफिशिएंसी के साथ उस कर्म को कर पाएंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बीती ताही पिसारते, वक्त के खजाने में जो कुछ मोती हमसे पिछड़ चुके होते हैं, मतलब हमारा अतीत का हिस्सा बन चुके होते हैं, और उनको लेकर हमारे जहन में बहुत से पश्चाताप होते हैं, बहुत से अफसोस होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में हम खुद को नहीं रोक पाते अपने भविष्य की चिंता करने में। लेकिन श्रोताओं, इस बात को समझना होगा कि ना तो हम अपने बीते हुए वक्त को लौटा सकते हैं, ना हम अपने आने वाले भविष्य को काबू कर सकते हैं। जिंदगी जो है वो आज है, आज मतलब वर्तमान है। इस बात को जानते तो सभी हैं परीक्षित जी, पता भी सभी को है, लेकिन जी नहीं पाते वर्तमान में, क्या किया जाए?
3: मैंने अभी जैसे पहले बात हुई कि हमारे ऋषियों ने इस सब चीजों का समाधान पहले से ही हमें दे रखा है, बस केवल आवश्यकता है तो उन सब चीजों को जानने की और उस पर काम करने की। और यह बहुत बहुत ही सुंदर सूत्र महर्षि पतंजलि एक देते हैं योग दर्शन में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। पहले तो बताते हैं कि योग है क्या। योग है मन की वृत्तियों को शांत करना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। फिर वो बताते हैं कि ये होगा कैसे, तो वो बोलते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, मतलब निरंतर अभ्यास और आसक्ति से जब हम मुक्त रहेंगे तो ही हम मन की चंचलता को निरंतर काबू में कर सकते हैं। तो उसका मेनली जो मुख्य वो है अभ्यास। जब हम इन चीजों को हम जानने लगे हैं, आज योग की आवश्यकता को सारा संसार स्वीकार कर रहा है, पर धीरे धीरे उसके और बढ़ रहा है, उसको जान भी रहा है, पर जैसे जैसे वो हमारे अभ्यास में आएगा तो हम धीरे धीरे इन सब चीजों जो कि हमारा स्ट्रेस रिडक्शन है और मन की चंचलता है, इसको कंट्रोल में कर सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मन को काबू में रखें, वर्तमान में अपनी जिंदगी सुख और तनाव रहित होकर बिताएं, तो जरूरी है कि आप योग से अपना नाता जोड़ लीजिए। तो परीक्षित, कौन कौन से ऐसे योग आसन हो सकते हैं जो ध्यान को केंद्रित करने में, वर्तमान में जीने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: इसमें न केवल योगासन बल्कि प्राणायाम और योग के जो बाकी अंग हैं जैसे धारणा और ध्यान, वो विशेष रूप से बहुत सहायक हैं हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए। आसन क्या करते हैं, आसन करने से हमारे शरीर को जो जड़ता है, शरीर का आलस्य दूर होता है। आलस्य दूर करने के बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से प्राणों की ऊर्जा जब हमारे शरीर को मिलती है, हमारे शरीर उसी समय जो हमारा मन है वो वर्तमान में आ जाता है। और वर्तमान फिर धारणा क्या है, धारणा है कि एक पॉइंट पर जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो धारणा, और फिर धारणा के बाद ध्यान। तो ये सब चीजों को अपनाकर हम अपने स्ट्रेस को, ना केवल मन को कंट्रोल कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। यदि मन मनुष्य का मित्र बन जाए तो उस जैसी कोई बात नहीं, और मनुष्य अगर शत्रु हो गया तो फिर उस मनुष्य के उसको पतन को कोई रोक नहीं सकता। तो एक कविता है मन के ऊपर, मनसाना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसाना और कोई शत्रु हुड़दंगा है, मन ही से शांति गीत, मन ही से रीत प्रीत, मन ही से कल है कपट द्वेष और दंगा है, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता ईश, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है, और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा।
2: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता आपके खुद के मन से हो जाए तो ना तो आपको कभी अकेलापन घेरेगा, ना आप अपनी तमाम चिंताओं के लिए किसी और को दोषी ठहराएंगे, बल्कि अपने मन को अपने बस में रखकर आप उन तमाम दुखों से बाहर निकल आने में जरूर कामयाब हो पाएंगे जिसके कारण आप परेशान रहते हैं। और यही विधा सिखाता है प्राणायाम और योग। तो जैसे परीक्षित जी आपने कहा कि प्राणायाम मदद कर सकता है, कौन कौन से प्राणायाम भी क्या कई प्रकार के होते हैं?
3: जी, प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। अभी जैसे मुख्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ये सब प्राणायाम हम लोग करते आ रहे हैं। लगभग सब लोगों को इसके बारे में पता है, टीवी देखकर या सोशल मीडिया से और कहीं से जानकारी लेकर भी लोग करते हैं, परंतु एक सीमा में रहकर और पूरा एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर ही हम लोग इन सब योगिक क्रियाओं को करें तो वो उनका जो लाभ है तभी हम पूरी तरह से ले सकते हैं।
2: तो मान लीजिए परीक्षित जी कि अगर कोई प्राणायाम कर रहा है और सही तरीके से नहीं कर रहा तो क्या कोई

0: परेशानी हो सकती है।
1: जी बिल्कुल, परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कुछ लोग जिनको हाई बीपी की शिकायत है, वो अगर प्राणायाम को तेज गति से करते हैं तो ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं, तो हाई बीपी वालों को उससे दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो अगर सावधानी से नहीं करते हैं प्राणायाम को, तो उनको भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती हैं।
0: मतलब जिस प्रकार अलग अलग बीमारियों के लिए हमें अलग अलग विशेषज्ञों की और अलग अलग दवाइयों की दरकार रहती है, ठीक वैसे ही अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके साथ कोई विशेषज्ञ जरूर
1: जी,
0: मौजूद हो।
1: हर चीज का मर्यादा में होना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी भी चीज को, वो चाहे हम कुछ भी ले लें, ना केवल प्राणायाम, कुछ जीवन में किसी भी चीज को ले लें, जिस चीज की मर्यादा टूटेगी तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर देखा देखी आप इन सब पद्धतियों को अपना लेते हैं और खुद के गुरु खुद बन जाते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं होगा आपकी सेहत के लिए, आपके मन के लिए। इस बात को जहन में रखना बहुत जरूरी है। परीक्षित जी, अब जैसा कि हमने जिक्र किया था, आपसे बातें करेंगे माइंडफुलनेस की और तनाव प्रबंधन की। चाहे बच्चा 7 या 8 साल का हो, जिसने स्कूल के दरवाजे में केवल कुछ पायदान ही चढ़े हों, या फिर बड़े बुजुर्ग जो अपनी तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर में बैठे हों, महिलाएं हों, युवा हों या कामकाजी क्षेत्र में संलग्न हमारे व्यापारी हों, नौकरी पेशा हों, शायद समाज का कोई ऐसा तबका होगा जिसका वास्ता आज तनाव से नहीं पड़ता। मतलब कहने का यह है कि चाहे उम्र कोई भी हो, वर्ग कोई भी हो, सबकी जिंदगी का कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथी बन गया है तनाव। तनाव से मुक्ति कैसे पाई जाए?
1: योग के नियमित अभ्यास से रोज का हम एक समय बनाए कि जिस समय, चाहे वो सुबह है, प्रेफरेबली सुबह करना चाहिए, चाहे वो शाम को है, रोज हम अभ्यास का अपना एक समय बनाए और उस समय और कुछ भी ना करें, उस समय को केवल अभ्यास को दें। उस समय हम आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तो जिस समय भी करेंगे वो दिन पूरा आपका तनाव से मुक्त ही निकलेगा। और तनाव, न केवल तनाव, जैसे विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थियों में एकाग्रता और स्मरण शक्ति की भी बहुत वृद्धि होती है जब हम योग करते हैं। एक विद्यार्थी जो योग को अपनाकर साथ में अपनी पढ़ाई कर रहा है और एक जो बिना योग की हेल्प के अपना कार्य कर रहा है, दोनों की एफिशिएंसी में, दोनों के रिजल्ट में आप देखेंगे बहुत फर्क आएगा। क्योंकि योग न केवल स्ट्रेस रिडक्शन करता है, वो अपने स्मरण शक्ति की वृद्धि में और एकाग्रता की वृद्धि में भी बहुत सहायक है। ऐसे महिलाओं में भावनात्मक संतुलन का विकसित होता है महिलाओं में योग से। जैसे महिलाओं में हम बोलते हैं ना कि महिलाएं भावनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा अस्थिर होती हैं,
0: कमजोर होती है।
1: जी, तो योग करने से जो हमारी उनकी महिलाओं की भावनात्मक असंतुलन है वो भी बहुत दूर होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि विद्यार्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, तो हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए भी योग फायदेमंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत फायदेमंद है बड़े बुजुर्ग। और इस बार का तो थीम ही, अभी आपने बताया
0: बिल्कुल
1: कि एजिंग के ऊपर अब की बार का थीम लिया गया है, तो अब वो वृद्धावस्था एक ऐसी परिस्थिति है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, धीरे कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि तनाव प्रबंधन अगर आप करना चाहते हैं, अपने तनाव से मुक्ति चाहते हैं, देखिए श्रोताओं, जिंदगी चलेगी तो उसमें सुख दुख उतार चढ़ाव का आना तो तय है। अब हमें खुद को समझाना होगा कि हम उस उतार चढ़ाव से खुद को कैसे निकाल पाते हैं, कैसे हम अपने मन को अपने काबू में रख पाते हैं, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को संभालने की जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी खुद की आती है। और तनाव भी आएगा, लेकिन तनाव को संभालना कैसे, इसमें योग जो है कुछ खास आसन या कुछ खास विधाएं हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, योग में मुख्य रूप से सब आसन, चाहे वो व्यायाम भी है, चाहे वो योग आसन भी है, और उसके बाद प्राणायाम, जैसे मैं अभी अभी हमने बात की, कपालभाति है, भस्त्रिका है, भ्रामरी प्राणायाम है, इतनी ऊर्जा बढ़ा देते हैं वो अपने हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा को इतना बढ़ा देते हैं कि तनाव तो कहीं ठहरता ही नहीं है। और जहां पर तनाव नहीं होगा तो फिर वो मन शांत और स्थिर रहेगा, और शांति और स्थिरता जिस मन में आ गई तो वो अपना ऊर्ध्व गति को ही मन वो प्राप्त करेगा, और जिस मन में शांति और स्थिरता की कमी रहेगी, फिर वो हर चीज के ऊपर वो मन रिएक्ट करता है हर चीज के ऊपर। हमें रिएक्ट नहीं करना होता, हमें रिस्पॉन्ड

0: करना होता है। तो रिस्पॉन्ड करने में और रिएक्ट करने में बहुत डिफरेंस है। तो हम अपने मन को ऐसा ट्रेन करते हैं योग के माध्यम से कि हर सिचुएशन को हम रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। तो रिएक्शन का मतलब है जैसी वो सिचुएशन आई तुरंत हमने डिसीजन से उसको एकदम रिएक्शन दे दिया। पर रिस्पॉन्ड का क्या मतलब है, स्थिर मन से जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग योग है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मानसिक समस्याओं की, मानसिक विकारों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आसपास हमारे देख रहे हैं कि मनोचिकित्सक भी काम कर रहे हैं, मनोविशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकी जरूरत ना पड़े तो आज से ही योग का अपना रिश्ता जो है वो मजबूत कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम करेंगे धन्यवाद परीक्षित आर्य जी का, जो योगाचार्य हैं, अनुभवी हैं। उन्होंने आकर आज हमें बताया कि किस प्रकार हम माइंडफुलनेस सीख सकते हैं, किस प्रकार हम अपने तनाव का प्रबंधन सीख सकते हैं। तो परीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी और प्रसार भारती की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा बहुत से कार्यक्रम प्रसार भारती के माध्यम से योग के विषय में करवाए जा रहे हैं। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध कि जुड़े रहें और कार्यक्रमों से लाभ उठाते रहें।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: नूर भाई, ये तो सुने बण भैया ने पहले भेंट वार्ता, उसके बाद अपने जन उपयोगी संदेश और ये हरियाणवी फिल्म से गीत भाई।
1: और इसी हरियाणवी फिल्म गीत के साथ हमारे गांव कार्यक्रम समाप्त करने की नूर भाई ने
0: और सुनीता बण ने दे इजाजत, कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भैया ने
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे गांव एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। रात के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: आपको पता है, दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी अनिल भल्ला। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, अब ज्यादा बात ना करते हुए कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे किन किन श्रोताओं ने हमें अपने संदेश भेजे हैं और अपनी फरमाइश भेजी है। तो शुरुआत करते हैं इस पहले मैसेज के साथ जो हमें मिला है। मोहल्ला हलवाइया, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कोसर का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले ये हमारे श्रोता हैं, गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ठुकिया, प्रमिला, ज्योति, शिवम, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु और ईवा धारणिया का मैसेज हमें मिला है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, जाजनगर, लक्सर, हरिद्वार से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता है भोईवाड़ा पैठण से शेख चांद, शेख फुरखान, शेख कुफरान, शेख जाकिया और ये हमारे श्रोता रहेंगे। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है और एस एम जावेद, शगुफ्तांजुम और ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। और इनके साथ एक श्रोता और है नजमुल होदा, गुमला झारखंड से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा तंवर, विक्रम, अर्चना और साक्षी डाभी, गांव ढूकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लोप्रीत कौर व करमजीत कौर का मैसेज हमें मिला है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें जोहड़ी वाड़ा पैठण से फईम मोरवे, आसमा मोरवे, अंजुम और खुशी और गौरी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। चरखी दादी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप का मैसेज मिला है। गांव मसूदपुर, जिला हांसी, हरियाणा से सुभाष जांगड़ा, राजेश, पंकज, रेणु, सीनू, निशु, गीता और रामरति जांगड़ा और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का मैसेज हमें मिला है। और मंडी आदमपुर बाईपास से रणधीर लाटीवाल उर्फ धीरू भाई और आत्माराम नैन का मैसेज हमें मिला है। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे श्रोता रहेंगे कस्बा अग्रवाल, मंडी टटेरी, बागपत, यूपी से, आसिफ अली खान, मोमिन नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

साथियों, सुहाने मौसम की हर अदा कुछ खास होती है। हवा की हर लहर में एक मीठी सी बात होती है। जो ठहर कर महसूस करे इस मौसम की खुशबू को, उसके दिल में बरसों तक इसकी याद होती है। साथियों, बारिश के इस भीगे भीगे मौसम में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता रहेंगे गांव जाखुद राजस्थान से शंभू।

दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। इसी के साथ ही हमें संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का मैसेज आया है। और हमारे श्रोता रहेंगे राजस्थान से जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धो कड़वासरा और हनुमान सहारण ने हमें संदेश भेजा है। और कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का मैसेज हमें मिला है। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमधाड़े का मैसेज हमें मिला है। देवशंकर तामोरिया, जयदेव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डाली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, इन्होंने हमें मैसेज किया है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से ये हमें मैसेज हमें भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईश्वरीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज, रोहित, मीनाक्षी तिवारी, नरेंद्र तनेजा, आशा गुगलानी, बिपाशा शर्मा, सोनिया कालका और मीनाक्षी तिवारी का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद, मायल सीमा और लक्षिता, यसिका, माँ विद्या देवी और सारा इनका परिवार हमें मैसेज कर रहा है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता हैं नरलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान ताड़े और नारायण इंगले का मैसेज हमें मिला है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला और विशाल राठौड़ का मैसेज मिला है। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू हमें मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं खुपटी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, पोपलघट, देवीदास पोपलघट का मैसेज हमें मिला है। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा हमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं राजवीर जांगड़ा, सोनू जांगड़ा, अनिल गेट, छोटू जेनेवा, मनदीप और इनके सभी साथी गांव हरिता जिला हिसार से मैसेज हमें ये भेज रहे हैं। और हमारे अगले श्रोता हैं कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ और दयानंद गायकवाड़ का मैसेज हमें मिला है। बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, विकास गोयल, नीतू गोयल का मैसेज हमें मिला है। और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमें मैसेज कर रहे हैं। और अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश घोड़के का मैसेज हमें मिला है। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अंभई तहसील सिल्लोड से ये मैसेज हमें कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं गांव पनिहार चकिसार से विनोद टेलर, साहिल दैया, कृष्णा कहना, लड्डू ममता और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण। गांव चौधरीबास से हमें मैसेज कर रहे हैं राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। और लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र, अंकित, सुमू, तानिया, यश बेनीवाल, गर्वित, उर्वशी और योगिता गोदारा हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं सभी साथियों की ये पसंद।

बरसती बूंदों में तेरी मुस्कान नजर आती है, हर ठंडी हवा तेरी खुशबू साथ लाती है। भीगा भीगा ये मौसम बस इतना कहता है, मोहब्बत हो सच्ची तो हर रुत सुहानी हो जाती है। दोस्तों, ठीक उसी तरह जैसे आपकी और हमारी मोहब्बत है। एक तो बाहर बारिश हो रही है और दूसरा बारिश हो रही है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की। ये बारिश देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका और हमारा जो रिश्ता है कितना गहरा है, और आप बड़ी शिद्दत से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें भेजते हैं। और बढ़ते हैं अगले मैसेजेस की ओर। ये हमें भेजा है हमारे श्रोता हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव। सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है हमारे नियमित श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का मैसेज हमें मिला है। और बावड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पचेरवाल, उमेश पचेरवाल, योगेश, कुलदीप पचेरवाल, उपेंद्र युवान, प्रेम खटक, धर्मवीर खटक, कार्तिक कायत और सभी इनके परिवार और मित्र गण, सभी सदस्य हमें मैसेज कर रहे हैं। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें मैसेज किया है। ये हमारे श्रोता हैं जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत, माणक उषा बाला देवी प्रजापत का मैसेज हमें मिला है। और गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा का मैसेज हमें मिला है। और जौहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पुरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें अगला मैसेज किया है। अब्दुल गफार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे का मैसेज हमें नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे श्रोता हैं जिन्होंने मैसेज किया है ये सादुल शहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज हमें मिला है। लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण हमें गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की ये पसंद।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में

0: सोच नहीं लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
0: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
0: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: दोस्तों, हमें अगले गाने के लिए हमें मैसेज मिला है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, और गांव हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से राधे श्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा का संदेश हमें मिला है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव जेवरा हिसार हरियाणा से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण और सभी इनके परिवार के सदस्यगण ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम और आदिब का मैसेज हमें मिला है। हमारे अगले श्रोता रहेंगे फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा और सभी इनके परिवार के सदस्यगण ये हमें मैसेज कर रहे हैं। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है। पटियाली रोड गंजडू डुवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का मैसेज हमें मिला है। हमारे अगले श्रोता हैं पेवराज कुमार गांव कैरू जिला भिवानी से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले अगले श्रोता रहेंगे ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। गांव ठुईया फतेहाबाद हरियाणा से गगन सोड, दीपक, राकेश और मीना देवी का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही दत्तरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे

श्रोता रहेंगे जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप का मैसेज हमें मिला है। परमानंद नंदिनी ये हमें मैसेज कर रही हैं भोडा होशनाक गांव से, फतेहाबाद हरियाणा से मैसेज ये हमें कर रही हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा का मैसेज हमें मिला है। सुनते हैं सभी साथियों की ये पसंद।

साथियों, चलते चलते हमें मैसेज मिला है नागपुर महाराष्ट्र से। कमल सहनी, पिंकी सहनी और डॉक्टर अफजल मलिक, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहनी और सुनीता सहनी का मैसेज हमें मिला है। और हमारे एक श्रोता ने और मैसेज किया है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो का मैसेज हमें मिला है। साथियों, इसी गीत के साथ

कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792-5353-272। इस नंबर पर आप हमें अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और अपने जो संदेश हैं और अपनी फरमाइश हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने को है। आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वी कंक्लूडेड द हिस्टोरिक India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सिंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मोश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्ट्रोम के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया।

0: काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
2: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर

0: सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलोरी के बोल, रामदेव।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनो जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो तुम।

0: वाली सुनो जादू भरी आंखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो।
1: उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म से ये गाना, जावेद अख्तर की बोल, राजेश रोशन का संगीत।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना। सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

दानसिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत दानसिंह के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। दानसिंह खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दान सिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुंह

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल ना जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल ना जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल ना जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल न जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने

संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: 103.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र मुंबई से किया जा रहा था।

पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी अनिल भल्ला। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com।

तो अब करते हैं आपके ईमेल्स संदेश पढ़ने का सिलसिला शुरू। और शुरुआत करते हैं इस पहली ईमेल के साथ जो हमें आई है दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हमारे श्रोता रहेंगे हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और ये हमारे श्रोता हैं मजनू का टिल्ला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही पटियाली रोड गंजू डेवारा से हमें संदेश आया है अमीर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। हमारे श्रोता रहेंगे गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से। ये हमारे श्रोता हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी और डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने हमें संदेश भेजा है। हमें संदेश आया है एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने संदेश भेजा है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने हमें ईमेल के जरिए अपना संदेश भेजा है। और सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती का ये गीत।

0: को पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: अरे भाई साहब, ये बीएलओ घर घर क्यों आ रहे हैं?
2: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
2: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
1: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
2: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
1: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
3: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत, अपने साथी अनिल भल्ला के साथ और आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारी ईमेल आईडी है radiohisar@gmail.com। हमें ईमेल आई है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, दतार सिंह शेखावत, संगीता कमर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ने हमें ई संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश मिला है, हमारे श्रोता रहेंगे गांव जेवरा हिसार से, वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, मनोज भ्यान और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें हमारे श्रोता ने मैसेज किया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार का संदेश हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे ग्राम पंचायत काले गांव से, ये है श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली, कुमार सरवद देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने संदेश भेजा है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं।

इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह ने हमें संदेश भेजा है। लुधियाना पंजाब से अक्षित प्रेक्षित हमें संदेश भेज रहे हैं और इसी के साथ ही हमारे अगले श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें संदेश भेजा है। ये हमारे श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा ने संदेश हमें किया है और अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री, बलहर शहर से सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे का मैसेज आया है और अनिल बुरांडे और इनके साथ जो श्रोता थे इन्होंने हमें मैसेज किया है पांडर कवड़ा से। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप का मैसेज हमें मिला है और गंजू गवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमसुल कमर राही ने हमें संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार चिंडालिया और सभी इनके परिवार के सदस्य और इनके मित्र गण हमें संदेश कर रहे हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया का मैसेज हमें मिला है और ये हमारे श्रोता रहेंगे ग्राम हिपरसोगा तहसील जिला लातूर से सुमान शेख फौजी, सायरा बानो शेख और करिश्मा से शेख ने हमें मैसेज किया है और खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर जमीर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

बिल्कुल साथियों, जिंदगी हंसने गाने के लिए है और हर पल मुस्कुराने के लिए है। गम तो बस राह के मुसाफिर हैं, असली सफर दिल से जीने के लिए है। साथियों, जिंदगी एक मधुर गीत है और इसे गुनगुनाते चलो, हर मुश्किल में भी मुस्कुराते चलो। जो पल मिला है उसे दिल से जी लो, क्योंकि यही पल फिर लौट कर नहीं आएगा। हमें अगला मैसेज भेजा है हमारे श्रोता रहेंगे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से हमें संदेश भेजा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने हमें संदेश किया है। और ये हमारे श्रोता हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पुरुष का संदेश आया है। और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये मैसेज हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से, ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने मैसेज किया है, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रिहान, समरीन प्रवीण, माहिरा और नूर ने हमें संदेश भेजा है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर।

हमें मैसेज आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का, और हमें अगला संदेश भेजा है ये हमारे श्रोता रहेंगे अनारकली बाजार जगराओं से, कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक का हमें संदेश मिला है। सब्जी मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का हमें मैसेज मिला है, और हमें मैसेज आया है कमर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन एमपी मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली का संदेश हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत, आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस गाने की शुरुआत में हमने गायक कलाकार का नाम किशोर कुमार आपको बताया था, लेकिन ये गीत आशा भोसले की आवाज में था। किशोर कुमार की आवाज में भी ये गीत है, लेकिन वो अलग है। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये हमें भेजा है गांव लोहगढ़ ठकरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने हमें संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश आया है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र और सूरज और कुशल वर्मा का हमें संदेश मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले श्रोता हैं गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी ने हमें संदेश भेजा है। मुंडीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। और इसी के साथ ही हमें संदेश आया है, हमारे श्रोता रहेंगे आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा का हमें संदेश मिला है। गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरणदास का हमें संदेश मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें संदेश किया है। ये हमारे श्रोता हैं गांव चौधरीवास से ही हमें अगला संदेश मिला है। मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार ने हमें ये संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे ये हमारे श्रोता हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुद निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी ने हमें संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही ये संदेश हमें आया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, सुन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का ये गीत।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को

0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: आपको पता है दुनिया के 56% डिजिटल लेन देन कहाँ होते हैं? हमारे भारत में। दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट दरें कहाँ हैं? हमारे भारत में। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में अग्रणी कौन है? हमारा भारत। प्राउड टू बी एन इंडियन।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस पर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस पर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अरे भाई साहब, ये BLO घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: अरे आपको पता नहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 चलाया जा रहा है।
0: अच्छा, इसमें क्या करना होगा?
1: बस गणना फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरकर जमा करवाएं, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए।
0: अगर नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तब भी?
1: जी हाँ, तब भी SIR प्रक्रिया में भाग लेना जरूरी है।
0: वाह, ये तो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, 15 जून से 14 जुलाई तक BLO आपके घर आएंगे। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.aci.gov.in पर जाएं।
2: जिम्मेदार मतदाता बने, गणना फॉर्म अवश्य भरें। जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
5: साथियों, हमें अगले गीत के लिए फरमाइश आई है चौटाला हरियाणा से। दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने हमें संदेश भेजा है ईमेल के जरिए। इसी के साथ ही हमें संदेश भेजने वाले श्रोता हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का हमें मैसेज मिला है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश भेजा है तहसील रोड गंजडू डवारा से KH राही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी और हम्माद जमील ने हमें संदेश भेजा है। और हमें संदेश भेजने वाले अगले श्रोता हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और SK पप्पी का हमें संदेश आया है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें संदेश भेजा है। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने हमें संदेश भेजा है। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का संदेश मिला है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहताश बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने हमें संदेश भेजा है। हमारे ये श्रोता हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा, गांव कलाना राजस्थान से ये हमें ईमेल भेज रहे हैं। और बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग ने हमें ईमेल के जरिए संदेश भेजा है। सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर लावारिस फिल्म का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस और सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: साथियों, ये तो आपने सुने संदेश, और अब फिर से बढ़ते हैं आपके ईमेल संदेश की ओर। ये हमें संदेश भेजा है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, और इनके पिताजी हैं नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का ने हमें संदेश भेजा है। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता ने हमें संदेश किया है। ये हमारे श्रोता रहेंगे भोला कॉलोनी घरोंडा, जिला करनाल हरियाणा से हमारे नियमित श्रोता हैं विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान का संदेश हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें संदेश किया है, गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का संदेश हमें मिला है। और ये हमारे

श्रोता रहेंगे। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही हमारे अगले श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें संदेश किया है। गांव है डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर का हमें संदेश मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं गांव ठुईया जिला फतेहाबाद हरियाणा से गगन सोड, दीपक, राकेश और मीना देवी का संदेश हमें मिला है। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने हमें संदेश किया है। और दादरी गेट भिवानी के हमारे श्रोता हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जिला चरखी दादरी गांव चिड़िया दुधवा से सोनू संगेलिया, मंजीत संगेलिया, तनिष संगेलिया और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और हमारे श्रोता हैं शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन का संदेश हमें मिला है। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना ने हमें संदेश भेजा है। और इसी के साथ ही हमें अगला संदेश भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। जिला छत्रपति संभाजी नगर अंभई, तहसील सिल्लोड़ से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री और यज्ञेश का मैसेज हमें मिला है। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, देवंती हुड्डा, नरेंद्र, अंकिता, सुम्मू, तन्या, यश बेनीवाल, गर्विता, उर्वशी और योगिता कोदारा ने हमें संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर कार्यक्रम का अंतिम गीत मशाल फिल्म की आवाज में, सॉरी मशाल फिल्म से और लता की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: साथियों, ये तो आपने सुने संदेश, और संदेश से पहले आप सुन रहे थे मशाल फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2000

0: 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवा टेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। इन समाचारों का रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर

ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास

0: मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ही हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत में पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके।

0: टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इंप्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब ये यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वैरायटीज हैं, चाहे वो लैकडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इंप्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इंप्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर

0: पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो यह है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन इंटू ए रीजनल वैल्यू चेन विद द साउथ ईस्ट एशिया, एंड आई थिंक ऑल द स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव एक्चुअली टेक अस टू दैट पर्टिकुलर पैराडाइम, एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल दैट दिस अप्रोच रिकोगनाइजेज नॉर्थ ईस्ट एज बोथ अ नेशनल एसेट एज वेल एज अ गेटवे टू एक्सटर्नल मार्केट्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस बैलेंस द स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज।
1: तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार यह प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे,
1: बिल्कुल
0: और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इंप्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड वेन दे डू दैट They also retain their unique identity.
1: थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining.

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम सीरीज भाग 18। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:45 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।